FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 24वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली

0: मंत्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुंबई से प्रसारित चिंतन वंदनवार। उसके बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। तत्पश्चात आप सुनेंगे संगीत सरिता।

चिंतन। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। ये विचार महात्मा गांधी के हैं। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरितमानस का भाग 250। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग का भाग 3। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 और 7:40 पर होगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 और 8:15 और दिन में 2 सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार मदन मोहन पर। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 और 12 सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ और जुड़ जाइए फेसबुक पर कमेंट्स द्वारा। दोपहर समाचार का समय होगा दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम होगा दोपहर 3

और दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और इसी के बीच आप सुनेंगे 6 बजे हिंदी में समाचार। 6:30 बजे शाम में सुनिए झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। जयमाला कार्यक्रम का समय होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिए झलकी वादों की शाम, लेखक मदन मोहन खन्ना, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे सुनिए छाया गीत कार्यक्रम आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30। और रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आप सुन सकेंगे आज शाम 6:30 पर झरोखा के ही अंतर्गत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्री रामचरितमानस का भाग 250वां सुनिए।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसिया कर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा आरती अंकलीकर का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले हम राग पूरिया धनाश्री और राग पूर्वी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को राग पूरिया के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सारे संधि प्रकाश राग जो हैं, इनमें जैसे मैं पहले आपको कह चुकी हूँ कि ऋषभ और धैवत इनमें कोमल ही होते हैं और मध्यम हमेशा तीव्र होता है, लेकिन पूरिया में धैवत शुद्ध है। और पूरिया का जो सप्तक है यानी जो आरोह अवरोह है और इसमें जो सुर हैं, वही सुर राग मारवा में भी हैं, वही राग सोहनी में भी हैं, लेकिन फिर भी राग पूरिया अपनी एक शक्ल बनाए हुए है। यही सुंदरता है हमारे अभिजात संगीत की। पूरिया में कोमल ऋखभ, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद। इसकी जाति शाड़व है क्योंकि इसमें पंचम वर्जित है। इसका आरोह है नीरे गा।

तो म और ध के बीच में पंचम है ही नहीं, तो इसकी वजह से सप्तक जो है यानी इसका आरोह जो है सिर्फ छह सुरों का हो गया। इसकी वजह से इसकी जाति है शाड़व और अवरोह है सानी धमा गरेसा। अवरोह में भी तो पंचम वर्जित है। राग पूर्या की उत्पत्ति जो है मारवा ठाट से मानी जाती है। इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी है धैवत। पूर्या गाते समय अगर तानपुरे की पहली तार को अगर निखाद में मिलाया जाए तो इस राग की खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है। राग पूर्या का जो आरोह अवरोह है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।

राग पूरिया और राग मारवा और राग सोहनी तीनों रागों के स्वर जो हैं एक ही है, लेकिन उन्हीं स्वरों को देखिए किस तरह से उसका चलन आना जाना रखा है। पूरिया का जो चलन है कुछ इस प्रकार का है।

आज मैं आपको राग पूरिया में एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ, जो ताल तीन ताल में निबद्ध है। मैं मिल आई अपने पिया को,

अभी आपने राग पूरिया का परिचय सुना। अब हम एक फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। राग पूरिया पर आधारित ये फिल्मी गीत आशा भोसले की आवाज में है।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार झालावाड़ के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ में हूँ आपकी रेडियो दोस्त अमृता मीणा। तो स्वीकार करें हमारी ओर से प्यार भरा सा नमस्कार और आइए हम करते हैं हमारे आज के दिन की शुरुआत इस सुविचार के साथ।

जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का जो सुविचार है ये हमारे जीवन में जो हमारे साथ होने वाली समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, या हम कहें कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दर्शाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन में परेशानियां आती है या असफलताएं आती

आती है, यह हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हमें जरूरत है तो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलने की। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो परेशानियां हैं वो छोटी सी लगने लगेंगी। लेकिन उसी जगह अगर हम अपनी इन परेशानियों को नकारात्मक रूप से लेंगे तो हमें छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी नजर आने लगेगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं डालती हैं। ये बाधाएं हमें बताती हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता हम चुने, जिससे हम सही रास्ते की खोज कर पाते हैं। दोस्तों, जब हम कई बार कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं और ऐसे में जब हमें थोड़ी सी असफलता मिल जाती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर हम ऐसा ना सोचकर यूं सोचें कि इससे भी मैं कुछ नया ही सीखूंगा, तो हो सकता है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो बहुत छोटी सी हो जाए और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने लगे। दोस्तों, हम अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर

सफलता मिल जाती है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर हम ऐसा ना सोचकर यूं सोचें कि इससे भी मैं कुछ नया ही सीखूंगा, तो हो सकता है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो बहुत छोटी सी हो जाए और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने लगे। दोस्तों, हम अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर विचार करते रहते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। कई बार हमें लगता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता, या उसने ऐसा नहीं कहा होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों को सोचने की बजाय हम खुद के बारे में सोचें, हम अपने अंदर छुपी काबिलियत को पहचानें। हम उस चीज़ को यूँ ना लें कि हमें नुकसान हो रहा है या हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, बल्कि उन सभी परेशानियों से एक सबक लें। हम ये देखें कि हम कहाँ पीछे रह गए, कहाँ हमने कमी रख दी, कहाँ हम थोड़ा सा पीछे रह गए, हमारी मेहनत कहाँ पीछे छूट गई। जिस दिन हम इन सब चीज़ों को सीख लेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर परिस्थिति जीवन में कोई ना कोई नई सीख, एक नया अनुभव देकर जाती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर जो अनुभव है वो अच्छा है तो हमारे आने वाले जीवन के लिए बेहतर होगा, और अगर अनुभव बुरा भी है तो जब भी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आने लगेगी कि हमें किन चीज़ों से बचकर निकलना है, हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपकी ये सोच आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से देखने का एक बेहतर नज़रिया है। जब हम जीवन की घटनाओं के भागने के बजाय उनसे कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें हर समस्या छोटी नजर आने लगती है। हम अपने जीवन में किसी भी समस्या को पाने के लिए घबराते नहीं हैं, बस जरूरत है तो हमें एक छोटी सी कोशिश करने की, और वो ये है कि हम अपना नज़रिया बदलें। हर चीज़ में हम नकारात्मक चीज़ों को ना ढूंढकर सकारात्मकता ढूंढें, हम कमियां ना ढूंढकर अच्छाइयां देखें, हम ये देखें कि हमने जो पीछे किया है उनसे हमें क्या सीख मिली है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमसे छूट चुकी है। क्योंकि कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य, अपने जीवन में सहनशीलता और अपनी छुपी हुई परिस्थितियों में जो हमारे अंदर ताकत छुपी हुई है उसको पहचानने में हमारी मदद करती है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साथियों, कार्यक्रम में आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की इस चर्चा पर। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर निर्भर रहता है। हम ये कह सकते हैं कि युवा ही राष्ट्र की एक ढांचा है। प्रत्येक राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि युवा केवल हमारे देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति और इसी के साथ हमारे देश का भविष्य है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं में ही देश का भविष्य निहित है और किसी भी राष्ट्र की उन्नति साथ ही उसकी प्रगति का सीधा संबंध उस देश की युवा पीढ़ी की सोच से होता है। युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की रीढ़ और उसके भाग्य का निर्माता कहा जाता है। अपनी ऊर्जा, अपने विचारों और अपने कौशल के साथ साथ अपने जीवन में बल्कि अपने साथ साथ वो समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उनके सही मार्गदर्शन और सशक्तिकरण से एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण संभव है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता और जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी से समाज सशक्त होता है। युवाओं को सही शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना आज एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, जो युवाओं को रोजगार, उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मान और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये दिन युवाओं को तकनीकी, उनके जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, साथ ही निजी क्षेत्र और नीति निर्माताओं और विकास भागीदारों के बीच में समावेशी और टिकाऊ समाज के निर्माण में कौशल की भूमिका पर संवाद स्थापित करने का एक अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवाओं के जीवन में जो किस तरह से बदलाव आ सकते हैं और क्या युवा अपने जीवन में बदलाव के साथ साथ समाज के लिए कर सकते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आज ही के दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।

साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। तो कार्यक्रम में आइए, अब आपको अवगत कराते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

7:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में आज आप सुनेंगे छोटी छोटी आदतों से पर्यावरण को बनाए स्वच्छ व स्वस्थ, मुकेश कुमार लक्ष्यकार से मोहम्मद साजिद की बातचीत।

8:30 पर बहनों के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत। महिला जगत में आज चर्चा होगी विश्व युवा कौशल दिवस पर साथी के कामराज की जयंती पर। इसी के साथ भेंट वार्ता आप सुनें, जिसका विषय रहेगा डिग्री के साथ कौशल क्यों जरूरी। इस विषय पर डॉक्टर प्रणव देव प्रोफेसर इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से रितिका परमार की बातचीत। वही जानकारी की बातों में आज आप जानेंगे शिक्षा सेतु कार्यक्रम।

शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपने लिए कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में आज चर्चाएं होंगी विश्व युवा कौशल दिवस पर, साथी के कामराज की जयंती पर। हम और हमारा पर्यावरण में आज आप जानेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण बचाने में विज्ञान की भूमिका। वहीं चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में आज आप सुनेंगे सलोनी सुरेनिया से अंतिमा कुमारी की बातचीत। जानकारी की बातों में आज आप जानेंगे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर, और इसी के साथ आज का इतिहास और रोजगार सूचनाएं भी आप सुन सकेंगे।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत आप एक बार फिर से सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। शाम 7:00 किसान भाई सुनेंगे अपने लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल। कृषक चौपाल में चर्चा होगी कृषि कार्यों में जल प्रबंधन। इसी के साथ एक भेंट वार्ता आप सुनेंगे जिसका विषय रहेगा संतरे के बगीचों में कीट नियंत्रण कार्यक्रम। रवि यादव अनुसंधान अध्येता राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से बाल मुकुंद सुमन की बातचीत। और जानकारी की बातों में आज आप जान सकेंगे ग्रामीण भंडारण योजना एवं अनुदान पर। और इन सभी के साथ मौसम की जानकारी, बाजार भाव और समर्थन मूल्य भी आप सुन सकेंगे।

0: रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरस। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

और अब इसी के साथ आज के नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विचार और कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी साथी अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ। जावेद अख्तर के बोल हैं आनंद मिलिंद का संगीत। फिल्म का नाम है मृत्युदंड।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्या कहना से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं राजेश रोशन का संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हम सब चोर हैं फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, नवाब आरजू के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत।

साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम बेवफा से। गीत को आवाज दी है विपिन सचदेवा ने।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रस्त

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा

0: बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में

0: सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

0: के रास्ते नौपरवियन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
3: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है,

0: स्पोर्ट्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में आज आप सुनेंगे, छोटी छोटी आदतों से पर्यावरण को बनाए स्वच्छ व स्वस्थ, मुकेश कुमार लक्षिकार से मोहम्मद साजिद की बातचीत।
3: मिशन लाइफ भारत सरकार का अनूठा कैंपेन, जिसमें हम छोटे छोटे बदलावों से धरती की और हमारे पर्यावरण की स्वच्छता का संकल्प लेते हैं और इसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेते हैं। इसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है, तो हमें किस प्रकार से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनानी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमें किस प्रकार के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं झालरापाटन के हमारे युवा श्रोता मुकेश जी लक्षकार। मुकेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
3: मुकेश जी, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है मिशन लाइफ, मिशन लाइफ मतलब पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को पर्यावरण हित में कुछ अच्छा करके इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज यानी वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ स्वस्थ बनाने का आपका सपना क्या है?
4: सर्वप्रथम तो श्रीमान, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना।
3: जी जी जी।
4: सभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि वो हमेशा आकाशवाणी पे अपना भरोसा कायम रखें। सर, अगर मुझे किसी भी प्रकार का मौका मिलता है तो जल को लेकर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जहाँ भी मेरी नजर पड़ती है, जहाँ भी मुझे लगता है, वहाँ पर मुझे जल का बहुत अपव्यय सा महसूस होता है। जहाँ देखता हूँ वही या तो परिवार मिलता है, पड़ोस मिलता है, मोहल्ला मिलता है।
3: लेकिन देखिए, हमें तो आगे आना ही होगा, हम युवा हैं और हमें संकल्प लेना होगा और ये दूसरों को जोड़ना भी होगा।
4: हाँ, कोशिश तो करता हूँ मैं कि इनको कहूँ, दो बात भी कहूँ, चाहे इन्हें बुरा लगे तो लगे।
3: मन विचलित होता है कि हमारे पर्यावरण को हम किस प्रकार से नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं।
4: बहुत बहुत नुकसान
3: पहुँचा, जबकि कई छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपना लें तो हमारे पर्यावरण को हम स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। और आम आदमी को लेकर आपके जो विचार हैं, इनको बदलाव के लिए आप किस प्रकार के प्रयास करते हैं, किस किस प्रकार से लोगों को समझाते हैं कि कचरा नहीं करना चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए?
4: कचरे के लिए तो मैं हमेशा करता हूँ कि सबसे पहले तो ये चीजें मैं घर से शुरू करता हूँ। घर में मैंने छोटे छोटे 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरह का रसोई से जुड़ा कचरा अलग रखा जाता है और बाकी सूखा कचरा अलग रखा जाता है। और संदेश वाली गाड़ी तो आती है, कम से कम दिन में 2 बार तो आती है।
3: जी, जी, जी।
4: थोड़ा बहुत कचरा अपना घर का इकट्ठा कर लेते हैं और घर के बाहर ही हमें एक ऐसा वाहन मिल जाता है, कचरे को अपने निस्तारित स्थान पर पहुंचा देता है।
3: जी जी, डंपिंग यार्ड तक कचरा पहुंच जाता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो बारिश का मौसम है, जो भी बरसात हुई है ऊंट के मुंह में जीरे के समान, फिर भी हमें जल संरक्षण के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए।
4: बिल्कुल, संचय करना पड़ेगा सर जल का। तो हमें नई बिल्डिंगों में अब योजनाएं बनाई जा रही है कि बारिश का पानी इस तरीके से वो होल वगैरह बनके और वो
3: यानी कि एक ड्रेन बना दी जाती है और उसको टैंक से जोड़ दिया जाता है, पानी संरक्षित होता रहता है और वक्त जरूरत पर हम काम में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो पुराने जल स्रोत थे, कुएं थे, बावड़ी थी, तालाबे हैं, उन सभी में लोग कचरा बहुत ज्यादा डालते हैं। देखिए, आज झालरापाटन का गोमती सागर इतना बढ़िया पर्यटन स्थल है, लोग वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन वहीं पर इतनी गंदगी लोग कर देते हैं कि वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
4: पूजा पाठ के जो अवशेष होते हैं, सभी तरह के जो भी उनकी क्रिया वगैरह होती है पूजा पाठ से जुड़ी हुई, वो बाद में जो अवशेष बचता है

0: कि भाई वो अवशेष पैरों में ना आए, इस वजह से वो उसको जल में डालते हैं।
1: हाँ देखिए, इसके दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, उसकी खाद बनाई जा सकती है, उसको आप मिट्टी के साथ गोबर के साथ खाद बनाए तो एक अच्छी खाद बन सकती है,
0: खाद बन जाए जो अपने छोटे मोटे गमलों में भी काम आ जाए, छोटे मोटे उद्यान में काम आ जाए।
1: जी जी जी,
0: बड़े स्तर पे तो कृषि कार्य में आती ही है।
1: और जैविक जो खाद है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और इसी प्रकार से अगर हम पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की बात करें, आपके हिसाब से किन छोटी छोटी बातों पर हम फोकस कर सकते हैं कि हमारा जो काम जो भी हम कर रहे हैं वो पर्यावरण के हित में हो?
0: हाँ सर, एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे सबसे पहले तो।
1: जी जी जी,
0: अगर कोई जल संचय कर रहा है तो उसको देखते हुए हमें भी करना चाहिए। अगर कोई पौधे लगा रहा है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो हम उसका अनुसरण कर सकते हैं।
1: देखिए, पौधे लगाना वक्त के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम है और यही मौसम सबसे अनुकूल होता है कि जब हम बहुत सारे पेड़ पौधे कहीं भी लगा सकें।
0: हाँ, हर सीजन में लगे हैं सर, हर बार प्रशासन भी करवाता है और पब्लिक भी करती है, पर बहुत सी बार तो ऐसा लगता है जैसे सब दिखावा सा हो रहा है।
1: लोग पेड़ पौधे लगा करके भूल जाते हैं, हमें पेड़ लगाना भी, उसकी परवरिश भी करना है।
0: फोटो खींचता है सर बस,
1: मतलब रील बनाने के बदले हमें रियल बनना चाहिए।
0: रियल बनना चाहिए, रील की जगह रियल बनना चाहिए,
1: सही बनना चाहिए। मुकेश जी, आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास समाज में, या यूं कहें कि हमारे घर में बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा महिलाएं और पुरुष भी हैं, सब तरह के लोग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, तो सभी को अपने अपने हिसाब से किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि हम एक सहभागिता पर्यावरण के प्रति निभा सकते हैं?
0: सबसे पहले तो हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी।
1: जी जी, यानी खान पान अपना अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो।
0: खान पान है, सुबह समय पे उठना, साफ सफाई का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: घर से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने खुद का आवास, आवास के नजदीक की अपने आसपास की देखरेख।
1: हाँ देखिए, सबसे पहले हमें खुद से और घर से ही शुरुआत करनी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है।
0: मैं तो सर इसी चीज का ध्यान रखता हूँ कि अपनी वजह से कोई दूसरे को किसी भी प्रकार की कष्ट ना हो, चाहे अपने द्वारा फैलाया हुआ कचरा हो, अपने द्वारा फेंका हुआ पानी हो, अपने आने जाने की वजह से किसी को असुविधा हो रही हो। वाहन पे चलता हूँ तो मैं बराबर ध्यान रखता हूँ सर के कहीं मेरे ज्यादा हॉर्न बजाने की वजह से कोई पशु ना भिदक जाए, कोई बच्चे ना चमक के इधर उधर ना भगे।
1: साफ सफाई की हम बात करते हैं तो हमारे घर में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बड़े केयरलेस होते हैं, वो अपनी मनमर्जी का करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
0: उन्हें बुरा लगता है सर, वो तो ये चाहते हैं कि हम तो खुद ही कर लेंगे पर अभी हमसे कुछ ना कहा जाए।
1: सही कहा आपने।
0: करते तो हैं सर बच्चे, ऐसी बात नहीं है।
1: तो उन्हें भी किस प्रकार से आप प्रेरित करते हैं घर के बच्चों को?
0: जैसे सर कभी फल फ्रूट वगैरह ले आते हैं घर पे, आम हुए, केले हुए, तो जैसे केले के छिलके, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि जैसे मैं एक ही जगह इकट्ठा करता हूँ, बच्चे भी उसे एक ही जगह इकट्ठा करें, और अपना नाश्ते वगैरह के बाद में उसे सबसे पहले जो सूखा कचरे का जो डस्टबिन है या जो रसोई से जुड़े हुए जो डस्टबिन है उसी में डालें, न कि दूसरी पन्नी वगैरह में, दूसरे कागज में।
1: अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर के फल फ्रूट या कचरा जो भी होता है उसको एक पॉलीथीन में पैक करके घर के बाहर डाल देते हैं, वो पशु भी खा लेते हैं, उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और आसपास मक्खियां मच्छर बीमारियां फैलाते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये पॉलीथीन का जादू तो बरकरार है सर।
1: तो इसको पॉलीथीन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, कपड़े का थैला इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं?
0: हाँ सर, मैं सामान वगैरह लाने के लिए, किराने का हुआ, सब्जी वगैरह हुआ, फल फ्रूट वगैरह, इसके लिए मैंने कपड़े का थैला रख रखा है। हाँ, मैं एक छोटी मोटी दुकान भी करता हूँ सर, तो मेरे टिफिन वगैरह भी कपड़े के थैले में आता जाता है, ये तो मैंने सख्त हिदायत दे रखी है घर पे।
1: जी जी जी, देखिए इसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति कपड़े का थैला इस्तेमाल करना आरंभ कर दे तो जो पॉलीथीन से होने वाला नुकसान है उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं।
0: काफी हद तक सर, पर ये स्वप्रेरणा से ही होगा सर ये। हाँ, कि मुझे पॉलीथीन काम में नहीं लेनी तो नहीं लेनी।
1: बिल्कुल सही कहा मुकेश जी आपने। और आजकल हम देख रहे हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है, यानी जवानों की है, और युवा मन बहुत चंचल होता है, जाने अनजाने में या लापरवाही में ऐसे काम युवा कर देते हैं जो पर्यावरण के और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कचरा इधर उधर डाल देना, और अगर पिकनिक सैर सपाटे के दौरान जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतलें जो होती हैं, थैलियां होती हैं, उनके खाने का जो सामान होता है
0: सर, वो तो यूज करने के बाद तो उसको ना बड़ा निशाना लगा के फेंकने में बड़ा आनंद आता है सर। बोतल का ढक्कन होगा तो उसका भी बड़ा निशाना लगा के।
1: तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहिए?
0: उन साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा सर के वो खूब इंजॉय करें और अपने द्वारा जो भी अपशिष्ट होता है उसे एक जगह इकट्ठा करें, अगर साधन नहीं मिलता है उसको कहीं फेंकने का तो कम से कम एक जगह जरूर छोड़ देने के, कोई अगर और कोई व्यक्ति आएगा सचेत या कोई जागरूक व्यक्ति आएगा तो बाकी काम का निस्तारण वो कर देगा, पर आप इतना सा कर ले में कि अपना जो भी अपशिष्ट अवशेष है वो एक जगह इकट्ठा कर दें बस।
1: और अगर आसपास कोई जल स्रोत है तो उसमें तो कभी भी प्लास्टिक की थैलियां और कचरा ना डालें,
0: तो हमेशा दूरी

0: ही बना के रखनी, क्योंकि सर वही तो जल हमारा जीवन है,
1: बेशक बेशक।
0: चाहे तालाब का पानी हो, कुएं का हो या नदियों का हो, कहीं
1: कैसी।
0: भी सर्च के घूम फिर के वो वापस हमारे पास ही आना है।
1: और एक चीज और युवाओं में देखी जाती है कि अंधाधुन वाहन चलाते हैं, जरूरत न होने पर भी बाइक पर फर्राटे मारना, पेट्रोल
0: हाँ
1: जलाना और वातावरण में जहर घोलना।
0: सर, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी सर, वो तो सर वो जो वो पुष्पा जो है, वो जो टेढ़ी गर्दन रखता है
1: जी,
0: सर, आजकल महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की, मेरे युवा साथियों की, सभी की टेढ़ी गर्दन हो गई है। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लगता है सर कि मोबाइल को भी पर्यावरण से जोड़ना पड़ेगा, है तो ये भी
1: बिल्कुल
0: प्रदूषण का
1: पर्यावरण से
0: मुख्य
1: जुड़ी
0: कारण
1: हुई
0: हो रहा है।
1: वस्तु है, आपके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है जब इसमें से जो विकिरणें
0: सही
1: निकलती
0: है
1: हैं तो
0: सही
1: वो हमारे
0: है,
1: स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं।
0: बहुत नुकसान। तो सर पशु पक्षी दिखना बंद हो गए ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मधुमक्खियां
0: जो
1: गायब हो
0: छोटे,
1: गई हैं, कई
0: हाँ
1: छोटे मोटे जीव
0: छोटे जो
1: जिनकी।
0: जीव, पहले छोटी छोटी जो चिड़ियाएं अपने घर आंगन में आती थी सर, वो तो बिल्कुल ही बंद। कोरोना में जरूर महीने भर नजर आई थी सर वो।
1: हाँ देखिए, उस वक्त यही हुआ था ना कि लोगों ने हमारी हवा को, हमारे जो वायु है उसको प्रदूषित होने से बचाया था, घरों से लोग
0: बचाया
1: निकल
0: था,
1: नहीं रहे थे, वाहन नहीं चल रहे थे, पर्यावरण इतना स्वच्छ हो गया था। तो हम
0: गजब सर
1: इसको,
0: गजब हुआ था वो।
1: हाँ ये भी चाहिए ना हमें कि हम कहीं जाना है, नजदीक जाना है तो बाइक लेकर के ना जाएं, पैदल जाएं। अगर
0: स्वास्थ्य अच्छा होगा,
1: स्वास्थ्य अच्छा होगा, कई श्वास के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत घातक होता है धुआं, और महानगरों की खबरें हम सुनते ही हैं कि कितना दिल्ली में वायु का स्तर इतना खराब हो गया है कि लोगों को सांस लेना दुर्भर हो गया है। तो ये सब
0: सर
1: इसी
0: मैंने
1: वजह से हो रहा है कि पर्यावरण में जो ये पेट्रोल की और डीजल की कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो जरूरत के मुताबिक हमें वाहन का उपयोग करना चाहिए,
0: हाँ, मैं
1: यानी कि
0: चाहूंगा कि
1: हम
0: जैसे
1: सभी को
0: बच्चों
1: अब
0: को
1: समय आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने ही होंगे।
0: करने ही होंगे, वृक्षारोपण पे ध्यान देना होगा सर, जल संरक्षण पे ध्यान होगा, कचरा निस्तारण तो हो ही रहा है सर,
1: और तभी जाकर के हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं, और यही मतलब है
0: बचा सकते।
1: मिशन लाइफ का, यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का। और अक्सर हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, फास्ट फूड का चलन चल गया है, प्लास्टिक के पैकेट
0: बहुत
1: में जो सामान आता है
0: बहुत
1: उसको हम
0: ज्यादा सर,
1: खाते हैं, उसको जानते हैं कि कितना घातक है।
0: सर स्टेटस बन गया ना सर, अगर आप फास्ट फूड नहीं खाओगे तो आपको बैकवर्ड बता दिया जाएगा।
1: तो यही तो
0: तो
1: लोगों की सोच हमें बदलनी होगी। तो इसके लिए आप अपने
0: हाँ,
1: परिवार को, अपने आप को कैसे बचाते हैं?
0: मैं तो सर झगड़ा भी कर लेता हूँ परिवार में। हाँ
1: झगड़ा ना करें,
0: तो
1: प्यार से
0: नहीं
1: समझाएं।
0: नहीं मैं झगड़ा इसे कर लेता हूँ ना सर कि भाई हमें इन चीजों का उपयोग करना है और इनका तो कतई नहीं करना है।
1: देखिए हमारे देश में हर चीज उपलब्ध है, हर वस्तु खाने पीने की इतनी वैरायटी हमारे पास है, किसी और अन्य देश में नहीं है। तो फिर हम क्यों
0: नहीं है सर,
1: पाश्चात्य
0: नहीं
1: वस्तुओं को अपनाएं? जो भी वस्तुएं हमारे सामने हैं वो हम प्रकृति से ही लेते हैं, पर्यावरण से लेते
0: जी
1: हैं, और हम ये
0: जी
1: भी जानते हैं कि ये सब सीमित है, पेट्रोल भी सीमित है, जल भी सीमित है, बिजली भी सीमित है, गैस जो हम उपयोग में कर रहे हैं ये भी। तो इसका जरूरत से ज्यादा लोग अति दोहन कर रहे हैं, और क्योंकि उपयोग इसका बढ़ रहा है और इसीलिए इसका
0: जी
1: अति दोहन हो रहा है, और इसी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो हम इन सबको कैसे बचत कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं?
0: सौर ऊर्जा से हम पूरी तरह से जुड़ जाएं। मैंने अपने स्कूल जीवन में भी सोलर चूल्हे के बारे में भी पढ़ा, जाना भी है कि उसमें कैसे खाना बनता था। कुछ उस शैली को भी अपनाना चाहें तो गैस की भी बचत होगी, जो गैस हम अभी पिछले दिनों युद्ध वगैरह भी चल रहा था तो जानकारी मिली कि गैस भी बाहर से आती है, और उसी वजह से हमें गैस सिलेंडर भी महंगे दामों पे लेना पड़ रहा है। बिजली की बचत के लिए तो खैर अभी लगभग लगभग
1: हाँ, बिजली की बचत की हम बात कर रहे हैं तो बिजली की बचत ही बिजली का बचाव है, मीटर भी कम
0: हाँ
1: चलेगा, खर्चा भी कम आएगा। तो बिजली को बचाने के लिए आप अपने घर में किस प्रकार के प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से बिजली को बचाते हैं?
0: एक तो सर आवश्यकता अनुसार बल्ब जलाते हैं।
1: जी,
0: अब जैसे गर्मी का मौसम है तो मजबूरी है कूलर चलाना, तो कोशिश करते हैं कि कूलर चले तो पंखा बंद रहे।
1: यानी कम से कम उपयोग किया जाए।
0: हाँ कम से कम, घर में मेरे 2 टीवी है तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि सभी एक ही जगह बैठे हैं और एक ही टीवी में धारावाहिक वगैरह न्यूज वगैरह का आनंद ले ले। और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो मैं, जब मैं खुद निकलता हूँ तो मेरे अन्य लोगों को कह के निकलता हूँ कि भैया मैं जा रहा हूँ, आप आओ तो टीवी
1: ध्यान रखना भाई।
0: फ्रिज, हाँ टीवी है, कूलर है, पंखा है, एक्स्ट्रा लाइट है, वो जरूर बंद कर दें।
1: देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक घर में दिन भर में हमने 3-4 यूनिट भी बचाया, तो अगर करोड़ों घरों से अगर तीन चार यूनिट बचेंगे तो कितनी बिजली हमारे पास बचत के रूप में इकट्ठी हो
0: काफी हो
1: जाएगी।
0: जाएगी सर, काफी। एक छोटा सा परिवार ही अगर 2 यूनिट भी बचा लेता है तो महीने के उसके 60 यूनिट हो जाते हैं। सभी चीजों के बारे में मितव्ययिता तो हमें अपनानी पड़ेगी।
1: अब देखिए एक और बात आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि घर का जो भी मैनेजमेंट होता है, वो रख रखाव की बात हो, खान पान की बात हो, रहन सहन की बात हो, सब कुछ हमारे घर में लेडी पावर के हाथ में होता है, यानी घर की
0: हाँ नारी
1: महिलाओं के हाथ
0: शक्ति
1: में होता
0: सर,
1: है।
0: नारी शक्ति सर, बिल्कुल
1: जी
0: सही है
1: हाँ, नारी शक्ति। तो अपने घर और घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने और पर्यावरण अनुकूल बनाने में हमारी जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार की सहभागिता निभा सकती हैं? जो भी महिलाएं

0: रही हैं इस कार्यक्रम को?
1: उन्हें देख के तो सर अचंभा ही होता है मुझे तो। हाँ, अचंभा ही होता है सर। सुबह 4 बजे 5 बजे वो उठती है, सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई झाड़ू वगैरह करने के बाद में घर के आंगन की, अगर घर के आगे कोई गली है तो वो पूरी पूरी कोशिश करती है कि मैं पूरी गली की साफ सफाई करूँ। उसके बाद में सर जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है सर, तो घर का पानी भरना, कपड़े का धोना करना और रसोई का काम
0: जी।
1: उसके बाद आप तो बड़े बाबू साहब बन के उठ जाते हो कि भाई लाओ लाओ चाय लाओ। इतना करने के बाद सर वो चाय सर्व करते हैं, आप देखो नाश्ता आपके लिए तैयार करके देते हैं। उसके बाद सर फिर वो भोजन में लग जाते हैं, उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिलता है सर।
0: हाँ, रेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो अपने परिवार को पर्यावरण के प्रति सतर्क करें, घर के कचरे पर नियंत्रण करें, बिजली बचाने पर नियंत्रण करें, पानी बचाने पर नियंत्रण करें, तो कितना मतलब प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बच्चों में भी वही आदत आएगी।
1: हाँ बिल्कुल सर, नारी शक्ति का ही कारण है जो आज हम इतना कुछ थोड़ा थोड़ा भी कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले डांट उन्हीं से शुरू होती है हमें सुनने को।
0: बिल्कुल,
1: ये कर दिया वो कर दिया, पानी ज्यादा डोल दिया,
0: क्योंकि उन्हें तो पूरा मैनेजमेंट करना होता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: तो अब इस प्रकार से हम एक घर की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे विश्व की बात करें, अगर इन सब चीजों को अगर इसी प्रकार से फॉलो किया जाए तो कितना नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए आप,
1: काफी हो जाएगा सर। मैं तो महिला शक्ति को नमन जरूर करना चाहूंगा सर, संपूर्ण संपूर्ण भारत की और संपूर्ण विश्व की नारी शक्ति को नमन है सर।
0: मुकेश जी, वास्तव में अगर हर व्यक्ति पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो वास्तव में राष्ट्र निर्माण में प्रकृति के संतुलन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। और इसी के लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ का जो सपना है वो इसी प्रकार से सफल होगा।
1: जी जी सर बिल्कुल, हम उनके सपने को जरूर साकार करने में पूरी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग देंगे।
0: मुकेश जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में आज आपने सुना छोटी छोटी आदतों से पर्यावरण को बनाए स्वच्छ व स्वस्थ, मुकेश कुमार लक्षकार से मोहम्मद साजिद की बातचीत। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपने लिए कार्यक्रम महिला जगत।

अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रितिका और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। बिना समय गवाए आइए हम सीधे चलते हैं हमारे चर्चा की तरफ। सखियों, आज हमने चर्चा के रूप में एक ऐसे विषय को चुना है जो समर्पित है विश्व युवा कौशल दिवस को। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज 15 जुलाई है और आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो किसी भी युवा की सबसे बड़ी पूंजी है, उसका कौशल। साथियों, हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, आज का समय तेजी से बदल रहा है, नई तकनीकी आ रही है, नए रोजगार बन रहे हैं और काम करने के जो तरीके हैं वो भी समय समय पर बदल रहे हैं। ऐसे समय में केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को योग्य और कुशल बनाना भी अति आवश्यक है। आज के दिन को मनाने के पीछे यही भावना और उद्देश्य छिपा हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी उम्र नहीं है, आपका

कुशल है और आज के युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बनना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रुचि पहचानें, नई नई चीज़ें सीखने का साहस रखें और मेहनत से पीछे ना हटें और सबसे ज़रूरी बात अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको कंप्यूटर पसंद है तो आप डिजिटल कौशल सीखिए, यदि आपको मशीनों में रुचि है तो आप तकनीकी प्रशिक्षण लीजिए। आपका हर कौशल आपको सफलता की एक नए कदम की ओर आगे लेके जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता केवल बड़े शहरों में रहने वालों को ही मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच यह है कि सफलता उसी को मिलती है जो सीखना नहीं छोड़ता। साथियों, यदि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और तो एक दिन वही छोटी छोटी कोशिशें बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती है। मेरे सभी युवा दोस्तों और सखियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सीखना कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आगे बढ़ना भी रुक जाता है। सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि सही कौशल, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प का फल होती है। मेरे प्रिय युवा साथियों और सखियों, आप इस युवा विश्व युवा कौशल दिवस पर आप सभी अपने आप से 3 वादे कीजिए। पहला, कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे। दूसरा, असफलता से डरेंगे नहीं बल्कि कुछ नया सीखते रहेंगे। और तीसरा है, अपने कौशल का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए भी करेंगे। यही सोच आपको एक जिम्मेदार, सफल और आत्मनिर्भर नागरिक बनाएगी। दोस्तों, डिग्री आपको अवसर दिला सकती है, लेकिन कौशल आपको उस अवसर पर सफल बनाता है। इस विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य स्पष्ट है, अपने सपनों को पंख दीजिए, अपने हुनर को पहचानिए, नई तकनीकी अपनाइए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। और आज विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जयंती भी है, के कामराज जयंती। सखियों, हर वर्ष 15 जुलाई को ये मनाई जाती है और इस अवसर पर उनके स्वतंत्रता संग्राम, सादगीपूर्ण जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को याद किया जाता है। के कामराज का जन्म तमिलनाडु के विरुधु नगर में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में विद्यालयों की संख्या बढ़ी, गरीब बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और ईमानदारी, सादगी और जनसेवा के कारण उन्हें किंग मेकर भी कहा जाने लगा। उनका निधन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। उन्होंने 1976 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। के कामराज जयंती हमें शिक्षा, ईमानदारी, सादगी और निस्वार्थ जनसेवा के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। सखियों, बातें तो हम आगे यूं ही करते रहेंगे, अभी चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मेरी प्यारी सखियों और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। अब हम चलते हैं भेंटवार्ता की तरफ। आज का हमारे भेंटवार्ता का जो विषय है वह है डिग्री के साथ कौशल भी क्यों है ज़रूरी। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने और यह समझाने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो अपने अनुभव से बच्चों का भविष्य निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये भेंट वार्ता। सर, आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रणव देव यहाँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ।
0: सर, जैसा कि आप और हम आजकल देख ही रहे हैं, पहले के समय और आज के अगर हम तुलना करें तो आज के दौर में केवल डिग्री हासिल कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं। बदलते समय, नई तकनीक और रोजगार की बदलती आवश्यकताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान

0: के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी उतना ही आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर डिग्री के साथ साथ कौशल क्यों जरूरी है, आप हमें बताएं।
1: डिग्री और कौशल ठीक उसी प्रकार हैं कि डिग्री हमें प्राथमिक तौर से ये जानकारी दे देती है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, और कौशल वो है जो साइकिल चला के दिखाता है, कोई वो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर साइकिल चला लेता। तो डिग्री मूलतः सैद्धांतिक ज्ञान की ओर ज्यादा झुकी होती है और कौशल एक प्रायोगिक ज्ञान की तरफ झुका होता है। तो कौशल में ज्ञान, अनुभव और अभ्यास तीनों शामिल हो जाते हैं। तो डिग्री पर्याप्त नहीं बची है। जिस तरह से हमारे समाज में, पूरे समूचे विश्व के समाज में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव हमें संकेत दे रहे हैं कि डिग्री मात्र से कोई भी व्यक्ति या समाज सुखी नहीं रह सकता है। यदि उसे अपने को प्रगति करना है, या हमारे भारत में हम विकसित भारत 2047 का यदि लक्ष्य रखते हैं, प्रत्येक युवा को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे डिग्री के साथ साथ कौशल का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, भी वो समाज के लिए उपयोगी हो पाएगा।
0: सर जैसा कि अभी आपने डिग्री और कौशल में क्या अंतर है ये हमें स्पष्ट किया, अब आप ये बताइए कि जो हमारे आज का युवा है दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठा सकता है और ये संतुलन कितना उनके भविष्य के लिए आवश्यक है आपके अनुसार, आप बताइए।
1: जैसा मैंने पहले कहा कि डिग्री एक सैद्धांतिक ज्ञान देता है और एक प्रमाण पत्र, डिग्री का शाब्दिक अर्थ ही है वही प्रमाण पत्र या कोई उसका सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, उसी का सर्टिफिकेट डिप्लोमा का अपर रूप डिग्री हो जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएट जो बोलते हैं परा स्नातक डिग्री हो जाती है। तो एक डिग्री प्रमाण पत्र मात्र है जो ये बताता है कि भाई इस व्यक्ति को इस लेवल तक का ज्ञान होगा, किंतु उसने अभ्यास कितना किया है, अनुभव कितना लिया है, ये सब कौशल के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो युवाओं को दोनों स्थितियों में डिग्री के साथ साथ कौशल का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, तभी वो अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा वो जो प्रतिस्पर्धा का युग है उसमें पिछड़ जाएंगे। जैसा कि हम पा रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि इतनी भारी भीड़ है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि चतुर श्रेणी कर्मचारी के लिए भी डिग्री पर्याप्त नहीं बची है। यदि वो उस डिग्री के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता, अनुभव नहीं लिया है, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहा है। तो वो जो ताऊ व्यवस्था है कि 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हो जाना और कोई पन्ना हासिल कर लेना, अब वो जमाना गया जब पन्ने को देख करके नौकरी मिल जाती थी। अब हमें पन्ने में जो लिखा है, जो मेरे बारे में बताया गया, वो तो मुझे पता होना ही चाहिए, बल्कि उससे अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि एक संगीताचार्य को हमें रखना है तो उस पर संगीत की डिग्री भी होनी चाहिए और संगीत बजाना भी उसे आना चाहिए। हारमोनियम में कौन कौन से तत्व होते वो बता दे सैद्धांतिक रूप से, किंतु यदि बजाना नहीं जानता है तो वो कहीं उसे अवसर नहीं मिलेगा। अपनी बहनों के संदर्भ में बात करूं तो यदि वो YouTube पर खाना बनाने की जानकारी दे रही या चाय बनाने की, किंतु प्रैक्टिकली अगर चाय नहीं बनाई है या नहीं बनाना आता है, तो फिर वो चाय बनाने की विधि की जानकारी निरर्थक जाएगी।
0: जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कोई छात्र है जिसके पास अच्छी डिग्री लेकिन कौशल कम है, तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अपने अंदर वो कौशल किस प्रकार विकसित करे ताकि वो अपना एक सफल कैरियर बना सके, आपके अनुसार आप बताइए।
1: देखिए, यदि डिग्री बहुत अच्छी है और कौशल कम है तो वो प्राथमिक तौर से सरकारी जो सेक्टर है उसमें जा सकता है, किंतु जैसे ही वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएगा तो उसे कौशल की ज्यादा आवश्यकता होगी, डिग्री एक कम पीछे छूट जाएगी। जैसे कि देखिए, पहले बीटेक जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती थी वो कंपल्सरी करती थी, नाउ अब उन्होंने सबके लिए खोल रखा कि नॉन बीटेक भी यदि कॉम्पिटेंट है, कोडिंग उसे आती है, कोडिंग कर सकता है, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट हो गया है काम करके, तो वो उस क्षेत्र में उपयोगी रहेगा। अब दूसरी बात आती है उसे किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु प्रमोशन अथवा उस पद पर बने रहने के लिए कौशल का विकास करना होगा, अन्यथा वो पीछे छूट जाएगा और उसे जो वार्षिक वेतन वृद्धि है उससे वंचित होना पड़ेगा। जो कंपनियां काम देख करके, आजकल प्राय आप देखेंगी कि वार्षिक बढ़ोतरी 3% से लेके 13-15 यहां तक कि 30% तक की वेतन में वृद्धि करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका काम में कौशल में कितना दखल हो गया है, कितनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी वेतन वृद्धि होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई शेफ है, घर में कुक रखा हुआ है खाना बनाने वाला, तो वो कितने कम समय में खाना बना लेता है ये उसकी कुशलता पर निर्भर है, उसकी जो स्किल है उस पर निर्भर है। तो यदि ज्यादा लोगों को खाना बना लेता है कम समय में, तो उसको वेतन ज्यादा देते हैं।

0: है होटल में या घर में भी जो तेजी से खाना बना सकता है उसको ज्यादा जल्दी वेतन देंगे, बजाय इसकी कि वो जो स्लो खाना बना रहा है उसकी तुलना में। तो इस तरह से एक ऐसे युवा को जिसके पास डिग्री कितनी अच्छी है किंतु यदि कौशल का विकास उसमें कम हो पाया है, तो उसे अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपने साथियों के बीच में उसे एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, साथ साथ उसकी प्रोन्नति भी पिछड़ेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्री और कौशल में पर्याप्त संतुलन रखना चाहिए, और आज के युवाओं के लिए ये एक बहुत ही चुनौती भरा कदम है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल से छूट जाते हैं, जबकि वर्तमान में जो जरूरत है वो दोनों के लिए बनाए रखने की है। उसका दूसरा एक कारण भी है कि बी प्लान हमेशा कैरियर में एक होना चाहिए। ठीक, कोई यदि एक उत्साही युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है कि वो IAS बनना चाहता है या पुलिस अधीक्षक बनना चाहता है, बहुत अच्छी, किंतु उसको साथ साथ कोई बी कैरियर कि यदि वो उस कठिन प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है तो उसके पास कोई दूसरे कौशल का ज्ञान हो ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके।
1: युवा किस तरीके से अपने करियर को सफल बना सकता है, इस विषय पर काफी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन आप और हम दोनों महसूस कर रहे हैं, जैसे आप शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि आजकल के जो युवा हैं उनमें हम महसूस कर रहे हैं कि आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। तो सर, आपके अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं?
0: सभी युवाओं में एक ही समस्या है कि वर्तमान को छोड़ के भविष्य के या तो दूर के सपने देखते हैं या वो सिर्फ सर्फिंग करके अपने समय को खराब कर रहे हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि शॉर्टकट लेना चाहते हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सफलता का कोई संक्षिप्त या शॉर्टकट नहीं होता है। विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, तभी सफलता संभव हो पाती। तो जहाँ तक आत्मविश्वास की कमी है वो तभी है कि जब नियमित रूप से अपने कार्य को ना करने पर। उसके लिए जरूरी है कि नियमित रूप से अपने काम को करें, और एक समय में एक काम को अगर करेंगे ना, तो जिस समय पढ़ने बैठे उस समय पढ़ाई करें, जिस समय संगीत सीखने बैठे उस समय मन लगा करके संगीत सीखें। या महिला साथी जो है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा अपनी बहनों से कि वो जब किचन में हो तो पूरा सहयोग कर, किचन के कामों में पूरा मन लगा करके, और जब वो पढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ तो पूरे तरीके से पढ़ाई की तैयारी करें। तो उस तरह से क्या है कि वो आत्मविश्वास उनका कम नहीं होगा, और साथ साथ अब जब पूरी दुनिया कोरोना के बाद एक ऑनलाइन मोड से जुड़ गई है, तो इस ऑनलाइन मोड के माध्यम से वो बहुत कुछ बड़े महानगरों या दुनिया के किसी शहर की जानकारी को प्राप्त कर सकती हैं, कोई अच्छे से अच्छे कैरियर गाइडेंस को, कोचिंग को अपना सकती हैं ऑनलाइन मोड पर, और उसको भी करके वो सफलता पा सकती हैं और आत्मविश्वास को अपना सुदृढ़ कर सकती हैं। किंतु मैंने अपने लंबे अनुभव में ये देखा है कि जितने युवा हैं ये यदि ऑनलाइन कोचिंग भी, महंगी कोचिंग भी खरीदते हैं, तो 15 दिन तो वो ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, यानी उनकी अभिरुचि और उनकी तल्लीनता कम होती जाती है, और फिर वो खिसकते जाते हैं और उसको देखना बंद कर देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब वो पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस करेंगे, वर्तमान पर फोकस करेंगे, तो निश्चित ही आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। बहुत से महाविद्यालय में ऐसे हमारे छात्र और छात्राएं विशेष तौर से हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं छात्राएं महाविद्यालय में, तो आत्मविश्वास उनका तभी मजबूत रह पाएगा जब वर्तमान को अच्छा करेंगे।
1: काफ़ी अच्छी बातें सर आपने हमें बताई कि किस तरीके से जो युवा है वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। तो सर, अब अंत में देश के युवाओं के लिए आपका क्या प्रेरक संदेश क्या होगा ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकें?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे वर्तमान का भरपूर उपयोग करें। यदि उन्होंने किसी महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या किसी कला कॉलेज में हो, वे वहाँ पढ़ने जाएं और जो भी उनको वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं उनका पूरा व्याख्यान सुने और उनके दिए गए होमवर्क को पूरा करें, तभी आगे का रास्ता बने। सिर्फ किसी का इंटरव्यू सुन लेने से, इंटरव्यू देख लेने से, किसी IAS का, मैं देखता हूँ कि जो कोचिंग के बड़े बड़े नाम हैं उनके इंटरव्यू बच्चे दिन भर सुनते हैं, किंतु स्वयं का जो पाठ है, पाठ्यक्रम, वो उन्हें याद ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, या परीक्षा जब बिल्कुल सिर पर आ गई तो तब पढ़ लेंगे आखिरी पर, तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं, और जो सो रहे हैं उनके सपने पूरा होना बहुत मुश्किल है। विवेकानंद जी कहा करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यान्वरानुबोधिता, उठो जगो और

0: तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसका अर्थ ये है कि आपने जो भी अपने जीवन में बनने का सोचा है, करने का सोचा है, उसके लिए आपको सतत रूप से प्रयास करना होगा, तो आप निश्चित ही सफल होंगे।
1: सर, आपने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे जो श्रोता हैं, हमारे युवा हैं, उन सबको दिया। साथ ही आपने अपने कीमती समय में से जो समय हमें दिया, उसके लिए सर हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
0: आप सहित पूरे आकाशवाणी परिवार का धन्यवाद कि मेरी जो बात है युवाओं तक पहुँची। आप सबका धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: थैंक यू। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता जिसमें हमारा साथ दिया था डॉक्टर प्रणव देव जी ने, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात हमें कही है कि सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं है, कौशल बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। और ऐसा ही जो हमारी सरकार है वो भी समय समय पर कई तरह के ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं जिनसे जो युवा हैं वो अपने जो भविष्य है उनको बना सकते हैं, उज्ज्वल बना सकते हैं। उसमें से ही एक है शिक्षा सेतु कार्यक्रम, जिसे आज हमने हमारी जानकारी के रूप में चुना है। शिक्षा सेतु कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है, तथा जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हो गए हैं उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ना है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करना, नियमित उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक विशेष ध्यान देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का आंकलन किया जाता है, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, तथा अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। इस शिक्षा सेतु कार्यक्रम का लक्ष्य केवल बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना नहीं है, बल्कि उनके बेहतर शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना है। यदि समाज, शिक्षक और अभिभावक और विद्यार्थी मिलकर प्रयास करें तो हर बच्चा शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकता है। सखियों, अब चलते चलते एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, और हम सब मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपने लिए कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिवअप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। विधानसभा परिसर में होने वाले उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
2: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
1: प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर में बैठक कर VC के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, ANM और CHO के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख

0: रविया ने कहा है कि बीमित कामगारों और उनके परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने हैदराबाद से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 7 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत कोटा और भवानी मंडी में ईएसआई औषधालय और शाखा कार्यालय शुरू किए गए हैं। कोटा और भवानी मंडी में आयोजित कार्यक्रमों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेस्ट जोन के बीमा आयुक्त रामजीलाल मीणा ने बताया कि इन केंद्रों से औद्योगिक क्षेत्रों के बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा तथा ईएसआई की प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
1: यहाँ इन दो स्थानों पर लगभग 85,000 परिवारों को ईएसआई से की चिकित्सा और नकदी इलाज की सुविधाएं प्राप्त होगी। ये जो उद्योग नगर कोटा वाला जो डिस्पेंसरी है, ये 5 डॉक्टरों वाला डिस्पेंसरी और यहीं पे शाखा कार्यालय है, तो यहीं चिकित्सा लाभ भी मिलेगा और यहीं नकदी इलाज भी मिलेगा।

0: प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
1: यहां इन दो स्थानों पर लगभग 85,000 परिवारों को ईएसआईसी की चिकित्सा और नकदी तलाब की सुविधाएं प्राप्त होगी। ये जो उद्योग नगर कोटा वाला जो डिस्पेंसरी है, ये 5 डॉक्टरों वाला डिस्पेंसरी और यहीं पे शाखा कार्यालय है, तो यहीं चिकित्सा लाभ भी मिलेगा और यहीं नकदी तलाब भी मिलेगा।
0: विश्व युवा कौशल दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए आईटीआई तथा कौशल विकास संस्थानों में प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां रखी गई हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां युवाओं ने कौशल का प्रदर्शन करते हुए एआई, ड्रोन, सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इनमें पर्यावरण अनुकूल चलित आवास और पुरानी पुस्तकों के डिजिटाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 4 बेसिन हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन बेसिन शामिल है। इनमें से 3 में तेल की खोज और दोहन का काम हो रहा है। श्रीमती अरोड़ा ने कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो, ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। वीबीजी रामजी योजना के तहत श्रम नियोजन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थायी तथा गुणवत्तापूर्ण कामों को प्राथमिकता देने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पशु रोग नियंत्रण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा भी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में चलाए गए गिवअप अभियान से 99,00,000 पात्र जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। वे कल बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 67,00,000 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27,00,000 लोगों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई। इससे पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे। इस अवसर पर मंत्री ने लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राजस्थान में मुनाबाव से तनोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन कर रिपोर्ट जारी की है। पिछले महीने 311 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर किए गए ड्राइव टेस्ट में मोबाइल कवरेज, कॉल की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की गति का परीक्षण किया गया। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे 70 पर अधिकांश स्थानों पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध रही, हालांकि कुछ हिस्सों में नेटवर्क कवरेज की कमी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी सामने आई। परीक्षण में 5G नेटवर्क पर डाउनलोड गति 40 से 55 MB प्रति सेकंड तथा अपलोड गति 7 से 14 MB प्रति सेकंड तक दर्ज की गई। ऐसे परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। रिपोर्ट संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर दी गई है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष

0: पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिव अप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम और वक्त है अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए सोनू निगम और मीत ब्रोज अनजान की आवाजों में क्या सुपर कूल हैं हम इस फिल्म का गीत। कुमार ने इस गीत को रचा है, मीत ब्रोज अनजान का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना, समझा।

0: और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, अनपढ़, 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: 1975 जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टेलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। रीसेट की यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, नला ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: आके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
2: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का।
2: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
2: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
2: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
2: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी, वे तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
2: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा।
2: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत

0: ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया, बहुत बार।
1: जी जी
0: लेकिन उनका यह था कि आप करके दिखाओ सर, आपको क्या सही लग रहा है,
1: है ना? अच्छा,
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते आप हैं इस रोल के बारे में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है।
1: जी,
0: तो
1: जी, जी.
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है,
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ।
1: जी,
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा,
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल।
1: जी,
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: हाँ,
0: अब एवरीथिंग इज एट स्टेक।

0: एवरीथिंग इज एट स्टेक. वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है. ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी. स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी.
0: अब मुझे लग रहा था ना, वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था. एवरीथिंग इज एट स्टेक. अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं.
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए. तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड. तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक.
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया. मैंने बोला ये करता हूं. तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं, ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे. मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना. नहीं नहीं यार, वो गुस्सा हो जाएंगे. लाइक ठीक है छोड़ यार. मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए. मैंने बोला सर एक पॉइंट है. बोले हाँ बोलो. मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है, अगर आपको सही लगता है. उन्होंने बोल के देखा. एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है.
1: जी जी,
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप.
1: बिल्कुल.
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार. बोला हाँ गुड गुड, डू इट, एंड इट इज देयर इन द फिल्म.
1: यस यस.
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए. आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे. आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है.
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है.
1: जी जी जी.
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे. मैं कोई उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ.
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: है. बहुत जरूरी
1: है. हाँ,
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ.
1: जी,
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी.
1: अच्छा.
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी. और वो जाने को बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी. वो नहीं बोलते हैं. और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते है कि, तो उस पर मुझे लगा ना कि इसमें बापू बोलना चाहिए.
1: हाँ.
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो, महात्मा बोल रहा है.
0: हाँ, अब जो तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ. तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा. अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला. उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो. हाँ. थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है. ठीक
1: हाँ.
0: है, ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है. और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट. उसने नहीं बोल दिया. मैंने राजजी को बोला. सेट पे आए वो जब सीन करना था. हाँ चलो चलो. मैंने बोला राजजी ये. हाँ बोलो. मैंने सर ये ऐसा ऐसा है. बापू कैसे बोलोगे. मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा. हाँ बहुत बढ़िया. ही लाइक इट. तो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए. वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो. तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस.
1: क्या बात है.
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा.
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू. वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे. तो चीजें होती गई. कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था.
1: अच्छा.
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है.
1: बड़ा नाम है.
0: बड़ा नाम है. शोज करता है. हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी हमने साथ में पहली फिल्म थी.
1: अच्छा.
0: उसने कंटिन्यू किया. उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली. मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया.
1: जी.
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं. ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना.
1: जी.
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले.
1: हाँ.
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए. आप कुछ 4.5 घंटे का होगा. बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा. रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है.
1: अच्छा.
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था. उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए.
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे. मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है. कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ

0: बड़े शांत कभी जोन में। मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: रहती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया,
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: वेरी
0: है,
1: नाइस।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत
0: पढ़वाते।
1: पढ़वाते। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके।
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुकता

0: जाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
1: उस पर ज्यादा जोर दिया,
0: ज्यादा जोर दिया जाता है तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
1: जी, जी।
0: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
1: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं,
1: जी
0: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
1: बिल्कुल,
0: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं।
1: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं,
0: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
1: हाँ
0: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
1: हाँ
0: लाइव परफॉर्मेंस,
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है।
1: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
0: तुरंत यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
1: जी
0: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
1: जी,
0: तो ये चीज जो है जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है।
1: हाँ।
0: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
1: जी जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था
1: जी,
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते
1: जी,
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे
1: जी,
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए।
1: अच्छा।
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा।
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा।
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है।
1: अच्छा।
0: और लाइट कॉमेडी है।
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पर लाना।
1: हाँ।
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
1: जी,
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी।
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
1: अच्छा।
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि YouTube पे अवेलेबल है।
1: हाँ।
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया।

0: जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी
0: बड़े खूबसूरत तरीके से, हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
1: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे। और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली, आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा

0: प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर
1: जी
0: का
1: जी जी
0: था। तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे। बट
1: अच्छा
0: रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को
1: जी जी
0: उनकी, वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
1: जी
0: प्रोजेक्ट मेरे
1: जी
0: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन वो इज इन 20s,
1: अच्छा
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
1: अच्छा
0: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी ऐसा
1: अच्छा
0: दिखाएंगे। और
1: अच्छा
0: कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
1: हाँ
0: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी।
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
1: अच्छा
0: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
1: हाँ
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सार्कास्टिक विलन,
1: कई
0: तो
1: शेड्स हो सकते
0: कई
1: हैं
0: शेड्स हो सकते हैं।
1: जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
1: अच्छा
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था,
1: हाँ
0: मैंने सुना तो वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
1: जी
0: स्टोरी थी,
1: जी जी
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
1: ओह
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
1: अच्छा
0: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल,
1: अच्छा
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी
0: दैट
1: जी
0: वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था यूं ही चला चल रहा ही,
1: हाँ, मकरंद
0: वो
1: देशपांडे
0: मकरन जी
1: उसमें,
0: थे उसमें,
1: उन पर
0: हाँ
1: वो फिल्माया गया।
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ
1: हाँ
0: में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन,
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर
1: हाँ
0: ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूँगा।
0: जी
1: तो सबसे ज़्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी जी
1: मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
0: अच्छा
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम, जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
0: जी
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे।
0: जरिए
1: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
0: जी
1: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
0: जी
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा
0: और
1: किरदार।
0: एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है,
0: जी जी
1: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी,
0: जी
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था,
0: अच्छा
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो

0: क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था। इतने बाजू इतने सर, गिनले दुश्मन ध्यान से,
0: हाँ
1: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह वाह,
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत के मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना
0: यही
1: ही
0: गाना सुन
1: बहुत
0: लें?
1: एप्ट होगा कि
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: जब जी जान से खेलते हैं,
0: जी
1: जी जान से लड़ते हैं,
0: जी
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी, जी
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए।
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी, जी जी
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ।
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ।
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी, जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 females, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह,
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है
0: जी,
1: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
0: जी, जी जी,
1: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
0: क्या बात
1: तो है? ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाए।

0: कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक अंदोरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।
1: ओह क्या बात।
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने
1: हाँ
0: रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये मैं
1: जी
0: कंटिन्यू
1: जी
0: करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो
1: अच्छा
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
1: हाँ,
0: पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है। इट इज विथ मी,
1: अच्छा
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे
1: ओके
0: साथ ही है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूं, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा
1: जी जी
0: कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक
1: निश्चित रूप
0: योगदान।
1: से, और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि
1: हाँ
0: आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो,
1: हाँ
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ
0: तो
1: ना, आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इंपॉर्टेंस,
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है।
1: ओह
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि
1: किया
0: विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात,
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
1: वाह
0: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: गाना है।
0: खूबसूरत गाना
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

मेड इन इंडिया, ये था एल्बम का नाम और अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बिटू का संगीत था। इस वक्त आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में। ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन

0: हम किसी से कम नहीं। ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।
1: रंग

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं?

0: जी
1: आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाक से दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
2: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
1: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
1: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
1: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
2: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी।

0: बहुत गर्मी पड़ रही थी। सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
1: नाना जी।
2: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
3: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
4: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
3: ये लो, नानी जी भी आ गई।
5: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
5: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
5: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
3: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: चूंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
5: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
5: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
5: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
5: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
5: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला,

0: साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओह,
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा

0: कि तभी
1: अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय
3: हाँ?
1: कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने

0: अपना वही प्रश्न पूछा।
1: प्रणाम महात्मन।
2: जीते रहो पुत्र।
1: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
2: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
1: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
2: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर

0: सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।

0: काला पत्थर। इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आर डी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने सभा को लोकतंत्र की पाठशाला बताते हुए कहा कि सरकार को जनप्रतिनिधियों की आलोचना भी गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही जनता की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है।
2: अगर कोई मंच होता है तो लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं होती है, जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो। और मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। अब समय गया, समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता जवाबदेही उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, आज जनता उत्तरदायी जवाबदेही शासन मानती है।

0: सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की यात्रा लोकतंत्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सदन में अकाल, बिजली और जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर सार्थक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1: जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया, लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, ये हमारे विचार में है, और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे राजस्थान को गति देने का काम किया।
0: कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई पूर्व और वर्तमान विधायक शिरकत कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से आज दोपहर कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हाल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री खींवसर इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ बनाने तथा उपचार व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के आसींद में आज तड़के एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों की सरेरी गांव के पास राजमार्ग पर एक कार गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। मृतकों में एक युवक भीलवाड़ा जिले का जबकि 2 युवक बिहार के रहने वाले थे और भीलवाड़ा में केटरिंग का काम करते थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, निर्माण कार्यों और कवच प्रणाली से जुड़े काम समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही मानसून के दौरान रेलवे ट्रैक, विद्युत और सिग्नल प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद ना करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक ओर सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी जिंदगी में से गुजरता जरूर है, और वो कहते हैं ना कि जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल, एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं, देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रियतमा फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं

और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये जरूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल, रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए, और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है, और मौसम भी तो बदलता रहता है, मौसम का काम ही बदलना है। कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए, और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके संदेशों का।

जमीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलता ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ

साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समा ना होता इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समा ना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम सहने वाले को पता होता है फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो। कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहाँ परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं। हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है?

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। और आपका अंदाजा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर। बिल्कुल हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफर में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां पर आदत की बात की गई है वहां सुबह सूरज के उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में। और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है, उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा ज़रूर। मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की, और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन, यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में।

एक और श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसे ही कुछ एक चीज़ें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करने की क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाज़ों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज़ में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद

0: from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cusecs. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
1: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों उद्यमियों लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना अब समाचार विस्तार से भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों उद्यमियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं किसानों युवाओं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों नवोन्मेषकों पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता
3: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों मछुआरों

0: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा

0: परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
2: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड

0: उत्तराखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

गाइड फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों को। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, एसडी बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहाँ पानी नहीं बरस रहा वहाँ बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं,
2: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ, है ना?
2: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं।
1: जी,
2: हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी

0: नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त हम मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। वैसे हमारे
1: मकई का हलवा, मकई हाँ, का सूप बनता है,
0: मकई की खीर
1: यानी अनंत है नहीं? और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
0: और साथ में मंजरी, जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते
1: हैं, होता है, और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की
0: हाँ।
1: खत्म हो गई, इसका भी तो होता
0: और
1: है।
0: वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना
1: हाँ।
0: उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने, हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना, वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
1: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी,
0: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
1: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
0: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
1: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता
0: है, अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं
1: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
0: और खूब तरक्की करें,
1: खूब तरक्की करें, और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही AI की समझ, AI टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन, साथ ही उद्यमिता यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना, साथ ही रचनात्मकता और नवाचार यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना, और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सुनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा

0: ना की गई।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप करना चाहिए,
1: डेवलप करना चाहिए। और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं,
1: उठा रहे हैं।
0: कितनी सारी गृहणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत के डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे जो गृहणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद
0: भी
1: कर
0: सकते हैं। अच्छा, यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी,

0: तो सुनाली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर उस भी एक दूसरे की तारीफ से, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और ज्यामिति डिजाइन होती है और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों

0: निर्यात होता है, और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियाँ सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखे, यानी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी सी जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
0: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
1: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
0: और नहीं है तो खरीद ले।
1: और फिलहाल ये सुने, गीत
0: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना। तो
1: कि जब
0: साड़ी,
1: हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या कलेजा चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से
1: हमारी हिम्मत बढ़ जाती है,
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में, कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए, असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
0: ये
1: ना?
0: तो बहुत सही बात आपने कही है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिर कर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छूले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो, ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं, हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति की वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक

0: मुहावरा है, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आपको खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है इनको लिखना है जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल, इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं हो तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे।
1: तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते जब सिर्फ दीवारें साझा हों, पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं, तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे और

0: आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
1: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है। त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार। खुशी, गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
1: एक साथी लिखते हैं पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये छोटा सा बर्तन।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं सोनाली पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं। फ्लैट और सोसाइटी में ये ज्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है वो भी पता चल जाता था, और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी। या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो 3रे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात,
1: बहुत सही बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं। पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर। जी।

0: तो भाई देखो सोनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगी, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले लेते।
1: बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद बढ़ता
0: है ना जी। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसकी चाट बना सकती हैं। अब इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। एक बड़े कटोरे में गर्म सामान कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं। अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं।
0: हाँ।
1: तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छी।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जी को हल्का भूने, पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज़ हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज़ बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: रहना चाहिए। और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव। और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा योगदान।
1: अब 8 बजे का समय हो गया,
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुनने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी, कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र

0: रितकर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे, और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
0: पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहाँ भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें
1: क्या रिसर्च किया?
0: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं, जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है, तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया, कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
0: जी हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी, मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है।
1: जी,
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
0: जी
1: था।
0: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था, सुनो भाई साधो।
1: जी,
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी जी जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग की बीज अंकुरित होते रहे।
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था, तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था।
1: जी।
0: जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग लिखना।

0: क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें,
1: जी हाँ,
0: दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
1: व्यंग्य में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे

0: ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है
1: जी जी,
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी,
0: कई बार ये स्थितियां होती हैं।
1: तो हम किंग कर्तव्य विमोड नहीं हो सकते हैं, हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का
0: जी, अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे, तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा,
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चार्ट डाले थे।
0: क्या बात है।

0: उस समय पढ़ने का एक खास शौक
1: और
0: हुआ करता,
1: पढ़ने का
0: तो दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई का।
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम, वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता,
0: कौन पहले पढ़ेगा,
1: कौन पहले पढ़ेगा। तो ये जमाना था
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक, ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान,
0: तो इंतजार होता था धर्मयोग, कि कौन पहले पढ़ेगा,
1: धर्मयोग
0: जी, जी।
1: और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए
0: जी।
1: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता है।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में जा रहे
1: थे। रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा।
0: अव्वल थे
1: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम, तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
0: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दे, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद आती है?
1: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा
0: थी,
1: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं, कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है, उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना, नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा
0: जी। बड़ी अच्छी जानकारी दी, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जरूर,
0: कौन
1: जरूर।
0: सा गाना?
1: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
0: बहुत
1: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे
0: जी। जी,
1: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है

0: मन तड़पत हरि दर्शन को आज,
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात तो, है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप, चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ।
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ।
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीपी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
0: जी

0: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली। लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैं दीपावली में भी, जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था
1: हाँ
0: कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे,
1: हाँ
0: कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते थे।
1: जी जी
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
1: जी
0: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
0: जी हाँ।
1: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं,
1: जी
0: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
1: जी जी
0: 1959, ये
1: अनाड़ी
0: मेरे
1: फिल्म का गाना है।
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
1: अच्छा,
0: 28 जुलाई
1: क्या बात है।
0: 59
1: तो सुनते हैं यही
0: जी
1: गाना।
0: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर।
0: लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूँ और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं, क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी, जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिये में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाद जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक

0: पाई, आंखें छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। अगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं अगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर तीन शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चूं। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चूं में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। अगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन के निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है, बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी।
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी।
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका

0: लिए भेजा करते थे, तो साथ में एक पता लिखा टिकट लगा लिफाफा रखना होता
1: जी जी
0: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
1: क्या बात है,
0: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
1: से इंतजार होता
0: जी हाँ
1: था।
0: ये एक समय था और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया और स्व संपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी।
1: जी,
0: जब
1: जी,
0: हिंदी
1: जी.
0: ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, अब सब कुछ टर्न हो के
1: जी हाँ, एक समय था, एक समय बहुत था, जी हाँ, था जी।
0: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
1: जी जी,
0: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
1: एक पुल का काम,
0: पुल
1: करते
0: का काम
1: हैं
0: करता
1: कि
0: है।
1: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
0: नहीं, उससे परिष्कार भी
1: पार जा सकते हैं,
0: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है।
1: तो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी,
0: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
1: जी।
0: तो जो कुछ हम जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे साहित्य रहेगा।
1: जी बिल्कुल, किताब रहेगी,
0: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी,
1: एक उनकी बाकायदा दुनिया
0: हाँ,
1: है और एक, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
0: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी जी,
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
1: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: फायदे नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है
1: जी।
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और

0: उनके संकलन भी आ रहे हैं
1: जी।
0: और छप रहे हैं, चर्चा में हैं अभी। मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं।
0: जी हाँ,
1: नाटक भी था
0: जी।
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है
1: जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
1: है, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे DPS लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपनी श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटे तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटे तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना, भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है,
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है, एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: लाइक कमेंट एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
1: वाह,
0: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शास

0: व्यक्त भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो

0: दोस्त था हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक जगह
1: मंचन हुआ,
0: हाँ मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
1: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
0: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं तो उसका सीधा असर इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आँखों से देखते हैं। तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियाँ आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं। तो मेरी झलकियाँ मैं कामना करता हूँ कि विविध भारती से भी आए और इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
1: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने सारे साहित्यकारों को, तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
0: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
1: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
0: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
1: विस्मृत हो रही है,
0: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
1: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ, नमस्कार।
0: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से।
1: श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, नई उम्मीदें, नए सपने और नई संभावनाएं, और इन संभावनाओं से जन्म लेता है बदलाव।
1: बदलाव लाने वाले वो कदम जो रुकते नहीं, थकते नहीं, जो हर मुश्किल को मौका बना देती है।
0: जी हाँ दोस्तों, यही है युवाओं की असली पहचान, जो सोचते हैं अलग और करते हैं कमाल।
1: स्वागत है आपका श्रोताओं आकाशवाणी के सबसे प्रेरणादायी मंच युवाणी में। मैं हूं आपका रेडियो साथी जयेश राठौर,
0: और कार्यक्रम में मैं जुड़ी हूं आपसे अंतिमा कुमारी, और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोताओं, यहां बात होती है सोच की, संघर्ष की और सफलता की। यहां गूंजती है आत्मविश्वास की धड़कन और झलकता है उस भारत का चेहरा जो युवाओं के ऊर्जा से चमकता है, जो सपनों को से सजा है और संभावनाओं से पूर्णतः भरा है।
0: तो आइए दोस्तों, अपने जोश और उत्साह के साथ कदम बढ़ाइए उस सफर की ओर, जहां शब्द बनते हैं प्रेरणा और प्रेरणा बनती है पहचान।
1: क्योंकि यह है युववाणी आकाशवाणी पर, आपके लिए, आपके साथ, जहां हर युवा है प्रेरणा और हर आवाज है विश्वास।
0: मगर कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको ले चलते हैं गीतों के समंदर में, ढूंढते हैं एक प्यारा सा नगमा, कार्यक्रम का पहला ब्यूटीफुल गाना मोहरा फिल्म से आपके लिए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अंतिमा अंतिमा सुनो, जल्दी से आज का पूरा प्रोग्राम रीशेड्यूल करो,
1: क्यों
0: सब बदल दो। आज कोई फिल्मी गॉसिप नहीं होगी, कोई हल्की फुल्की बातें नहीं होंगी।
1: अरे जेश, तुम पागल हो गए हो क्या? लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हमारा माइक ऑन है और तुम मैं क्या कह रहे हो सब बदल दो? हुआ क्या है, कोई आफत आई है क्या?
0: आफत नहीं अंतिमा, आज एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी अभी बाहर सड़क पर एक जो सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पिता के पास दोपहर के खाने के पैसे नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ बैठकर चकाचौंध की बातें करने जा रहे हैं।
1: ओहो जेश, पता है तुमने मुझे डराई दिया, लेकिन तुम्हारी इस बात ने ना सीधे दिल पर चोट की है। और जानते हो, आज का दिन इस बात के लिए बिल्कुल सही है।
0: जी सही दिन मतलब? मैं यहाँ एक बच्चे की तकदीर की बात कर रहा हूँ और तुम कह रही हो सही दिन है।
1: हाँ जेश, क्योंकि आज 15 जुलाई है। आज से दशकों पहले एक शख्स ने भी तुम्हारी तरह ही सड़क पर एक देखा था। उसने भी बताया तुम्हारी तरह ही तड़प महसूस की थी। और आज जानते हो उसने क्या किया?

0: दिन इस बात के लिए बिल्कुल सही है।
1: जी, सही दिन मतलब मैं यहाँ एक बच्चे की तकदीर की बात कर रहा हूँ और तुम कह रही हो सही दिन है।
0: हाँ जयेश, क्योंकि आज 15 जुलाई है। आज से दशकों पहले एक शख्स ने भी तुम्हारी तरह ही सड़क पर एक देखा था। उसने भी बताया तुम्हारी तरह ही तड़प महसूस की थी, और आज जानते हो उसने क्या किया? उसने पूरे देश की तकदीर बदल दी।
1: अच्छा, कौन था वो शख्स अंतिमा जिसने एक बच्चे का दर्द देखकर इतिहास ही बदल दिया?
0: वो थे तमिलनाडु मुख्यमंत्री और भारत के किंग मेकर कहे जाते, जिन्होंने कसम खाई थी कि इस देश का कोई भी बच्चा भूख की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, और उन्होंने जन्म दिया मिड डे मील योजना को।
1: के कामराज जी, जिन जिनके हाथ में देश के दो दो प्रधानमंत्री चुनने की ताकत थी,
0: जी
1: जो चाहे तो खुद सत्ता का शिखर पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने महलों को छोड़कर गरीब बच्चों की थाली को चुना।
0: ईमानदारी की वो मिसाल जिन्हें दुनिया से जाने के बाद बैंक खाते में कुछ रुपयों के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन करोड़ों बच्चों की दुआएं मिली। आज उनकी जयंती पर रेडियो के माध्यम से हम उन्हें सलाम करते हैं। हमारी चर्चा ऐसी जारी रहेगी। अब वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: अंतिमा, वो आ रहा है।
1: कौन?
0: सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। वो सबको अपनी चपेट में ले लेगा। कोई नहीं बच पाएगा इससे, कोई नहीं बच पाएगा।
1: जेश, तुम्हारी आंखें इतनी डरी हुई क्यों हैं? तुम्हें मैं कब से नोटिस कर रही हूं, तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। साफ साफ बताओ ना, कौन आ रहा है?
0: वो जब आता है तो आता है ना अंतिमा, तो दुनिया का बड़े से बड़ा हथियार भी फेल हो जाता है। अच्छे अच्छे हो कि बोलती बंद हो जाती है। चारों तरफ बस एक सन्नाटा छा जाता है।
1: जयेश, तुम मुझे डरा रहे हो ना? इस वक्त जितने भी लिसनर अपनी गाड़ियों में या घरों में हमें सुन रहे होंगे, उनकी भी धड़कनें बढ़ रही हैं। प्लीज ये सस्पेंस खत्म करो, जल्दी से बताओ क्या हुआ।
0: मैं सस्पेंस खत्म कर दूं, लेकिन उसे आने वाले तूफान को क्या कौन रोकेगा? वो तो बिना किसी दस्तक के आएगा, और जो तैयार नहीं है उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा।
1: अरे, क्या वो कोई भूत है,
0: नहीं
1: कोई अदृश्य वायरस है, या
0: नहीं
1: फिर
0: नहीं
1: हमारी धरती पर किसी दूसरे ग्रह का हमला होने वाला है?
0: जी नहीं,
1: कुछ तो बोलो।
0: वो कोई दुश्मन नहीं है अंतिमा। वो हमारा आने वाला कल है, यानी कि भविष्य।
1: अरे अरे जेश, तुम भी ना, सच में मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम भविष्य से इतना डर क्यों रहे हो?
0: मैं अपने लिए नहीं डर रहा अंतिमा, मैं डर रहा हूं उस देश के युवा के लिए जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी हथियार के उस भविष्य की तरफ भागा जा रहा है।
1: ओ, मैं अब समझी तुम्हारी इस गहरी बात का मतलब। वो भविष्य जहाँ सिर्फ रटी रटाई डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, वो भविष्य जो बहुत तेज और बेरहम है। सच में
0: जी बिल्कुल सही कहा अंतिमा आपने। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हमारे युवाओं के पास खुद को बचाने का कोई हथियार नहीं होगा तो वो इस भीड़ में खो जाएंगे, कहीं बट जाएंगे।
1: और जानते हो जेश, उस आने वाले भविष्य से लड़ने का, उससे जीतकर अपनी पहचान बनाने का एकमात्र और सबसे अचूक हथियार क्या?
0: क्या है अंतिमा, जल्दी बताओ, अब सस्पेंस मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

0: हुनर यानी कि स्किल्स, और इसीलिए आज की ये शाम इतनी खास है क्योंकि आज 15 जुलाई को पूरी दुनिया मना रही है विश्व युवा कौशल दिवस।
1: तो दोस्तों, अंतिमा ने जो तो उस हथियार का पहचान लिया है, अब बारी है आपकी। अपनी कमियों को रोना छोड़ो और आज से ही कोई ना कोई नया हुनर सीखना शुरू करो, चाहे वो एडिटिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई टेक्निक काम हो, जो भी हो अपनी स्किल को डेवलप करो और उस आने वाले कल के लिए तैयार रहो।
0: बिल्कुल जयेश ने सही बात कही है, जब हाथ में हुनर होगा तो भविष्य आपको डराएगा नहीं बल्कि बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। चलिए शानदार सोच और ड्रामेटिक सस्पेंस के बाद थोड़ा मूड बदलते हैं और सुनते हैं शाम का एक कड़क और एनर्जेटिक गाना जो आपके अंदर के हुनर को जान। ये हमारे साथ

0: दोस्तों वक्त है कार्यक्रम के सबसे खास सेगमेंट चिराग जल रहे हैं युवा डायरी का।
1: जी साथियों, अब सुनाते हैं आपको एक भेंट वार्ता सलोनी सुनेरिया से अंतिमा कुमारी की बातचीत।
0: नमस्कार श्रोताओं, चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में हम ऐसे युवा साथियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने सपनों को मेहनत और लगन से साकार करने की दिशा में एक नई पहचान बनाई है। आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी है एक ऐसी युवा प्रतिभा जिन्होंने चित्रकला में स्नातक किया है, साथ ही ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण लेकर अपने हुनर को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। कला और सौंदर्य दोनों ही रचनात्मकता के ऐसे आयाम है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। हम आपके बारे में थोड़ा बहुत परिचित हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना विस्तृत परिचय दें।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सलोनी सुनेरिया है, मैंने चित्रकला विषय से बीए किया है।
0: सलोनी, हम आगे जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा और अब तक का सफर आपका कैसा रहा?
2: हाँ, बचपन से ही मुझे रंगों और चित्र बनाने का बहुत शौक था। पढ़ाई के दौरान मैंने महसूस किया कि कला केवल एक शौक नहीं बल्कि करियर भी बन सकती है।
0: बिल्कुल,
2: इसी दौरान मेरी रुचि ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र में बड़ी, इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को प्रोफेशनल कोर्स किया। आज मैं लगातार दोनों क्षेत्रों में अपने हुनर को आगे बढ़ा रही हूँ।
0: सलोनी जी, चित्रकला की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? क्या बचपन से ही आपकी इस क्षेत्र में रुचि थी?
2: हाँ मैम, बचपन से ही मुझे ड्राइंग और पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी और शिक्षकों का हमेशा प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे यही शौक मेरी पहचान बन गई। कॉलेज में जाकर मैंने इस कला को तकनीकी रूप से समझा और महसूस किया कि हर चित्र एक भावना और संदेश व्यक्त करता है।
0: सलोनी जी, आपने पेंटिंग के साथ साथ ब्यूटी एंड वेलनेस का क्षेत्र भी चुना है, इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी, हम जानना चाहते हैं।
2: मैम, मेरा मानना है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। पेंटिंग मुझे रचनात्मक सोच देती है और ब्यूटी एंड वेलनेस लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है। दोनों क्षेत्र में सृजनात्मक की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए मैंने सोचा कि एक से अधिक कौशल सीखकर अपने करियर के अवसरों को भी बढ़ाया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है सलोनी जी, कि आपने अपने करियर के अवसर को बढ़ाने की सोची। साथ ही हम जानना चाहते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में आपने क्या क्या सीखा और ये अनुभव कैसा रहा आपका?
2: हाँ मैम, इस ट्रेनिंग में मैंने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल, हाइजन और प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस जैसे कई बातें सीखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस क्षेत्र में केवल तकनीकी नहीं बल्कि धैर्य, व्यवहार और कस्टमर की जरूरतों को समझना भी बहुत जरूरी होता है।
0: सलोनी जी, क्या आपको लगता है कि आज के समय में स्किल डेवलपमेंट युवाओं के लिए बहुत जरूरी है?
2: बिल्कुल मैम, आज केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है। यदि किसी युवा के पास कोई अतिरिक्त कौशल तो उसके रोजगार और स्वरोजगार दोनों के

0: अवसर बढ़ जाते हैं। स्किल हमें आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, इसलिए हर युवा को अपनी रुचि के अनुसार कोई न कोई कौशल जरूर सीखना चाहिए।
1: सलोनी जी, इस सफर में आपको कई परेशानियां भी आई होगी, तो आपने उनका कैसे सामना किया हम जानना चाहते हैं।
0: हाँ मैम, हर नए क्षेत्र में शुरुआत आसान नहीं होती, कभी संसाधनों की कमी होती है तो कभी लोगों की अलग अलग राय सुनने को मिलती है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी मेहनत और सीखने की इच्छा को बनाए रखा। परिवार और शिक्षकों का सहयोग मिला जिसे हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकी।
1: अगर कोई युवा चित्रकला या ब्यूटी एंड वेलनेस में अपना करियर बनाना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: हाँ, सबसे पहले अपनी रुचि को पहचानिए, नियमित अभ्यास कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए। धैर्य रखिए क्योंकि सफलता धीरे धीरे मिलती है। नई तकनीकों को सीखते रहे और अपनी गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान दे। यदि मेहनत और लगन बनी रहे तो सफलता जरूर मिलती है।
1: सलोनी जी, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं हम जानना चाहते हैं।
0: हाँ, मैं दोनों क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ना चाहती हूँ। भविष्य में अपना एक अच्छा स्टूडियो और या केंद्र प्रशिक्षण शुरू करने की इच्छा है। एक अच्छा स्टूडियो या प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की एक इच्छा है, जहाँ मैं अपनी कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ अन्य युवाओं विशेषकर लड़कियों को भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकूँ।
1: कला और सौंदर्य, इन दोनों क्षेत्रों में आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली हम जानना चाहते हैं।
0: सबसे बड़ी सीख यह मिली कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग प्रतिभा लेकर आता है। यदि हम लगातार सीखते रहे, मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखें तो किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है।
1: हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका कोई प्रेरणादायक संदेश जो आप देना चाहेंगी?
0: मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए, अपनी रुचि के अनुसार सीखिए, मेहनत कीजिए और असफलताओं से घबराए नहीं। हर नया कौशल आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी आपका, आपने अपने अनुभव, संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे युवा श्रोताओं और अपने सपनों को पहचानने, नई नई स्किल सीखने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी हमारे युवाओं को। कार्यक्रम युवाणी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जिन भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सलोनी जी, जैसा कि हमारा रेडियो कार्यक्रम है तो रेडियो के माध्यम से कोई ऐसा गीत जो आप सुनना चाहेंगी?
0: हाँ मैम, मुझे वैसे तो सॉन्ग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सिंग किंग मूवी का तेरी और सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं यही सुनना चाहती हूँ।
1: श्रोताओं, आज हमसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ी थी सलोनी सुनेरिया, आइए अब सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आने वाले 10 सालों में हमारी सुबह की तारीख एक ख्वाब बन जाए, अगर नीले आसमान की जगह सिर्फ काला धुआं रह जाए, तो आपको कैसा लगेगा?
1: आज दिल भारी है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर और यह दम घोटता प्रदूषण, हम अपनी ही धरती को धीरे धीरे मौत की नींद सुला रहे हैं। क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हार चुके हैं, हार मान चुके हैं इस प्रदूषण से?
0: नहीं जीश, हम हार नहीं मान सकते। जब जब इंसानियत पर संकट आया है, तब मसीहा उठ खड़ा हुआ है और आज हमारी ढाल बनकर खड़ा हमारा विज्ञान।
1: विज्ञान अंतिमा, इसी विज्ञान की फैक्ट्रियों और गाड़ियों ने तो यह तबाही मचाई है।
0: आग से घर जलाना, पर आग पर खाना भी पकता है। विज्ञान अगर कल गलतियां की थी, तो विज्ञान के ब्रह्मा इस धरती को बचाने के लिए उतरा है।
1: जी बिल्कुल, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी वो तकनीक जो कुदरत से बगावत नहीं बल्कि कुदरत से मोहब्बत करती है और उसको सहज कर रखने का कार्य करती है।
0: बिल्कुल, सोचो जिन कोयले के पावर प्लांट्स ने आसमान को काला किया था, वहां सूरज की किरणों को कैद करके सोलर एनर्जी का सैलाब ला दिया है हवाओं के रुख से। दोस्तों
1: जी बिल्कुल, और वो गाड़ियां जो जहरीला धुआं उगलती थी, अब उनकी जगह साइलेंट और क्लियर विचेस ले रहे हैं। और ये सिर्फ गाड़ियां नहीं अंतिमा, ये धरती की टूटती सांसों को मिलने वाला और ऑक्सीजन है।
0: यही नहीं जयेश, जिस प्लास्टिक ने हमारी नदियां और समंदर का गला घोट दिया था, विज्ञान ने अब पौधों से बायोप्लास्टिक बना दिया है जो मिट्टी में मिलकर खुद मिट्टी बन जाता है, किसी की जान भी नहीं लेता है।
1: जी बिल्कुल, ये तो एक महायुद्ध है अंतिमा। एक तथ्य इंसानी लालच का अंधकार है और दूसरी तरफ विज्ञान की ग्रीन टेक्नोलॉजी का उजाला।
0: लेकिन विज्ञान सिर्फ हथियार है, लड़ना हमें खुद होगा। अगर आज हम नहीं संभले तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।
1: जी बिल्कुल।

0: तो अंतिमा जी, अब हमारे युवा साथियों को हम ले चलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। लेकिन क्या उससे पहले हमारे साथियों को एक प्यारा सा संगीत सुना दें, जिससे कि उनका मन चलता रहे और हमारे साथ वो जुड़े रहें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, गाने से पहले हम आपसे बोल कर गए थे कि देंगे आपको एक खास जानकारी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देती है। इसका नाम है प्री मैट्रिक्स योजना।
1: बिल्कुल जयेश, कई बार पढ़ने की लगन तो होती है बच्चों में, लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ बच्चों की राह में बाधा बन जाती हैं। ऐसे में योजना बड़ी मददगार साबित हुई है।
0: जी बिल्कुल, यह योजना पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
1: इस छात्रवृत्ति से किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ी जो अन्य सामग्री खरीदने में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों का जो मनोबल होता है वो भी बढ़ता है। दोस्तों
0: जी बिल्कुल, यह योजना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। आवेदक इसका सामान्यतः ऑनलाइन रूप से किया जा सकता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाता

0: आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होते हैं।
1: बिल्कुल, इन्होंने बताया योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तय पात्रता और आय संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, इसलिए विद्यार्थी अपने विद्यालय या संबंधित विभाग से सही जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
0: जी बिल्कुल, इस योजना के लिए पात्रता की जो हमने बात की, इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को यह छात्रवृत्ति और इस योजना का लाभ मिलता है। साथियों, इस योजना में आवेदन करने वाले छात्र के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसटी एससी ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के लिए वार्षिक आय सीमा 2,50,000 रुपये तक होती है। साथियों, याद रखिए, शिक्षा ही वह शक्ति है जो जीवन को नई दिशा देती है और छात्रवृत्ति योजनाएं उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
1: अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जिस योजना का लाभ लेने का पात्र है, तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें। हो सकता है आपकी एक जानकारी किसी का भविष्य बदल दे।

0: दोस्तों वक्त है हमारे कार्यक्रम के सबसे आखिरी सेगमेंट का, आज का इतिहास का। आज ही के दिन 1799 में नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों ने रोसेना स्टोन की खोज की थी, जिससे प्राचीन मिस्र की लिपि को समझने में बड़ी सफलता मिली थी।
1: साथियों आज ही के दिन 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा में सफल प्रक्षेपण किया था।
0: आज ही के दिन 1955 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा की गई थी।
1: साथियों आज ही के दिन 1611 में आमेर के राजा जयसिंह का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1974 में महावीर चक्र सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन निकेब झाकू का जन्म हुआ था।
0: 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नामक कोडमैन के तहत अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था।
1: साथियों आज ही के दिन 1936 में संस्कृत विद्वान कमलनाथ शास्त्री का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1925 में प्रसिद्ध अभिनेता बादल सरकार का भी जन्म हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित के कामराज का भी आज 1903 को जन्म हुआ था।
0: तो साथ के साथ यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपकी चर्चा में नए विचार और कुछ नया सीखने का होगा।
1: जी बिल्कुल, युवा कौशल की, जिससे युवा अपनी स्किल को डेवलप करे और हमेशा भविष्य के लिए आने वाली जो समस्याएं हैं उनके लिए तैयार रहे और अपनी स्किल डेवलप के साथ साथ अपना रोजगार भी का भी सृजन करे। इसी के साथ साथ हमने ग्रीन फील्ड के बारे में बात की, तो साथियों पौधे लगाइए और अपनी प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखिए।
0: उम्मीद कर
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर, यानी हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7 बजे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। इसमें कृषि कार्यों के जल प्रबंधन पर चर्चा होगी। डॉक्टर रवि यादव अनुसंधान अध्यक्षता से ली गई भेंटवार्ता होगी। संतरे के बगीचों में कीट नियंत्रण कार्यक्रम, जानकारी लीजिएगा ग्रामीण भंडारण योजना एवं अनुदान पर। साथ ही कृषक साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:15 पर, और गैर फिल्मी गीत गजल भजन का आनंद लीजिएगा हमारे सबरस के कार्यक्रम में प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है FM 103.2 MHz पर। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगोआपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मोहम्मद रफी के गाए गीत से। फिल्म है हवस।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म सौतन का गीत। सावन कुमार के लिखे इस गीत को भी संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए अब सुनते हैं पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म है महबूब की मेहंदी। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आबाए बहार आई। इस फिल्म में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत में लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल है। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

संगीत कथा साहित्य नाटक झलकी ज्ञान विज्ञान खेल स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जनता मतदान कर लोकतंत्र में अपना भरोसा बताती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वर्तमान और पूर्व विधायकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। संसद पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं राज्य विधानसभाएं गांवों, नगरों और परिवारों की आशाओं, सपनों और चिंताओं को की आवाज है। यही विधानमंडलों का मूल स्वर और गरिमा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, अपने निर्वाचकों से विनम्र होकर मिलने और धैर्य तथा संवेदनशीलता से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके सार्थक और नीतिगत सुझावों को जरूर अमल में लाना चाहिए। इससे बड़ा बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति विधानमंडलों भवनों की भव्यता में नहीं बल्कि उनमें होने वाले गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चाओं में निहित है। इससे पहले समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
1: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जन प्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहां विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। सम्मेलन में पूर्व और वरिष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इससे देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शे पर लाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं। फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती है तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंट्रैक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि में लगभग 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। इससे लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा को लेकर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान तथा एनएलयू जोधपुर की ओर से इसका आयोजन किया गया। एचसीएम रीपा में हुई इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि युवा प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है। स्कूलों और कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं।
3: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000

0: चार ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। ANM, आशा सहयोगिनियां और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत का ब्यौरा रखेंगे। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्री खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
2: जयपुर से एक विशेष दल आया, यहाँ पर हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारे पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो रही है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके कौशल विकास पर बल दिया गया। समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK विश्नोई ने कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में 100श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद और योग को दुनिया भर में नई पहचान दी है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयासों पर खुशी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
4: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।
1: राज्य सरकार सरकारी स्कूली भवनों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आज जयपुर जिले में विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण कर भवनों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। श्री यादव ने अधिकारियों को विद्यालय भवनों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में लोग मॉनसून के दूसरे दौर के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में हुई बारिश से गर्मी से राहत रही, बाकी स्थानों पर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। विभाग ने आज 18 जिलों के लिए गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियों का येलो अलर्ट बताया है। जयपुर में पहली बार कल विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान

0: इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश तथा पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में अगले महीने ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। 6 और 7 अगस्त को होने वाली इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी इंतजाम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिला पिछले महीने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष चर्चा में रहा। पीएम किसान उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह पाली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नेत्रा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद किया तथा शिविर के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल सुमेरपुर में भी शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों में चयनित 763 नवनियुक्त युवा युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जिला स्तर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क कर आमजन को परिवार नियोजन साधनों और स्वस्थ परिवार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ये गतिविधियां 18 जुलाई तक चलेंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम पाली के लाखोटिया उद्यान में किया गया। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड और आमजन ने कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के जनकल्याण के थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने छोटी छोटी बीमा योजना लाकर आमजन को सुरक्षा प्रदान की है। हर घर नल के तहत 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान चिकित्सा कर्मी, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर दस्त रोग से बचाव, हाथ धोने की सही विधि, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और ORS तथा जिंक के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों को ORS पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों सादड़ी के दौरे पर रहे। वे सादड़ी में शिवनगरी में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा तथा 21 कुंडीय महारुद्र महायज्ञ रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारम्भ समारोह बाली के कोट बालियान ग्राम पंचायत में किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का LED स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कोट बालियान गांव के खेल मैदानों में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। टेक्सटाइल उद्योग की पहचान रखने वाले पाली अब पैकिंग बैग का नया केंद्र बनता जा रहा है। लघु उद्योग भारती की पहल पर साड़ी, सलवार सूट सहित विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग

0: में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। खास बात यह है कि बैग निर्माण में सिलाई कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा घर पर ही किया जाता है। जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाजारों, पार्कों, हॉस्टल सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिजर्व पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने महिलाओं को सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर सम्मानित किया। इसी के साथ पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपे से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जन नुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनन री अर्ज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माते मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। बत्ती जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएला। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर रे सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला शुरू बिरखा रो अलर्ट। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहो है कि जनता मतदान करने लोकतंत्र में आपरो भरोसो बतावे है, वणा जन नुमाइंदाओं जनता रा ई भरोसा ने बनाए राखण सारू पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन रे साथ है काम करने री अर्ज करी। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रे मौके विया मौजूदा एर पहली रा विधायिका रा सम्मेलन में बोल रिया हा। उपराष्ट्रपति कहो के राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र री धड़कन है। संसद पूरा देश री आसामा री नुमाइंदगी करे है, वठे राज्य विधानसभा में गांवा, नगरा एर पिरवारा री आसामा, सपना एर चिंतावा री आवाज है। यही विधानमंडला रो मूल स्वर एर गरिमा है, वणा जन नुमाइंदाओं आपरा वोट देवन आलाओं नमने मिलन और धीरज और संवेदनशीलता रे साथे वारी बात सुनन री अर्ज करी। उपराष्ट्रपति कहो के जन नुमाइंदा चाहे सत्ता पक्ष रवे चाहे विपक्षरा, वारा सार्थक और नीतिगत सुझावा ने जरूर काम माय लावना चाहिए, इणु मोटो बदलाव आवे है। वणा कहो के लोकतंत्र री ताकत विधानमंडला रा भवना रे शानदार होवणो नहीं है, बल्कि वामाय गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चा वामाय है। इणु पहला समापन जलसा ने राज्यपाल हरिभाव बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संबोधित करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के जन नुमाइंदा रा विचार न्यारा न्यारा वह सके है, फिर उन सगणा रो मूल मकसद जनता री भलाई है।
2: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहां विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में शिरकत करी। सम्मेलन में पहली रा 18वां विधायका रो सम्मानी करी जियो। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजनावा ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी मीटिंग में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनावन रा प्रस्ताव माथे मोहर लागी है। बैठक रे पछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने फैसला री जानकारी दी। वणा बतायो के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सारू 1,27,500 करोड़ रुपया रा बजट ने मंजूरी दी रिजी है। इणु देश ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शा माथे लावण माय मदद मिलेला।
3: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती है, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती है, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट

0: करती है यंग पर्सन जो इसमें काम करते हैं, उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
1: मंत्रिमंडल 62,500 करोड़ रुपया का बजट के साथ है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना ने मंजूरी दी है। श्री वैष्णव कहो के आ योजना आवता 5 साल में लागू करी जायला। ये योजना री बगत में कोई 39 लाख करोड़ रुपया रा मोबाइल फोन बनाया जायला। इनु कोई 60,000 लोगों ने सीधी नौकरियां मिलन री आस है। मंत्रिमंडल यूरिया सारू राष्ट्रीय निवेश नीति ने मंजूरी दी है। इनरो मकसद यूरिया हल्का में नुआ निवेश ने बढ़ावो देवणो है, जिणो आत्मनिर्भरता रो लगस हासिल करियो जा सके। चुनाव मीडिया और मतदाता शिक्षा ने लेर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी। नवी दिल्ली रा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और NLU जोधपुर का न्यू इनरो आयोजन करीजियो। SCM रिपा माय भी ई संगोष्ठी माय बोलता मुख्य चुनाव एहलकार नवीन महाजन कहो के युवा प्रजातंत्र रो अहम हिस्सो है। स्कूल और कॉलेजा माय मतदान प्रक्रिया रा बारा माय जागरूकता बधाई जावे। इसारू राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाई गया है।
2: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश भर में आज आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो मोटो स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुई हो। 5 दिन तक चालन वाला ये अभियान में ऊंची जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएगा। ANM आशा सहयोगिनिया और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत रो ब्यौरो रखेला। ई बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर आज बांसवाड़ा में मीडिया साथ बतल में कहो कि सरकार आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य ने लेर घनी संवेदनशील है। न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे अजय भी प्रसूता मारी मौत रा सवाल माथे वणा कहो के विशेषज्ञ की टीम ने वास्तविक कारण की जांच कर रही है। श्री खीमसर कहो के घनकरा मामला में किणी तरह रा संक्रमण एर दवाइयां रा रिएक्शन अजय तय सामने नहीं आया है।
3: जयपुर से एक विशेष दल आया, यहाँ पर हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारे पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई BP और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हुई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके आज प्रदेश में न्यारा न्यारा आयोजन हुआ। प्रभात फेरी रैली और दूजा जागरूकता कार्यक्रम री मार्फत नौजवाना ने आत्मनिर्भर बनन रो संदेश दीजियो। साथ ही न्यारी न्यारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैरियर मार्गदर्शन सत्री राखी जा। जयपुर में हुआ कार्यक्रम में नौजवाना ने स्वावलंबी बनावन सारू वारा कौशल विकास माथे जोर दीजियो। जलसा में कौशल रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK वैष्णोई कौशल विकास रा हल्का माय चोखो काम करने वाला नौजवाना रो सम्मान करियो। जलसा माय बोलता श्री विश्नोई जवाना ने कौशल सिखावण ने जोड़ ने रोजगार रा मौका मुहैया कराउण री सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई।
4: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे। सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुर्वेद हल्का माय आधुनिक तकनीक काम माय लेवन माथे जोर दियो है। आज नई दिल्ली माय सोश्रुतम 2026 रा उद्घाटन जलसा माय बोलता श्रीमती मुर्मू कहो के सरकार आयुर्वेद और योग ने दुनिया भर माय नोए पिछाण दी है। वना आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा री प्राचीन परंपरा ने

0: આધુનિક માનકા માટે સ્થાપિત કરવાની કોશિશ માટે ખુશી જતાઈ. રાષ્ટ્રપતિ કહ્યું કે આયુષ મંત્રાલય આયુર્વેદિક સ્વાસ્થ્ય સેવાના વૈશ્વિક માનકીકરણને મજબૂત કરણ સારું વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન સાથે મિલને કામ કરે.
1: આયુર્વેદ કી ઇસ કલ્સિત પરંપરા કે માનકીકરણ કા ઓર ઇસે સાયન્ટિફિક વેલિડેશન કે આધુનિક વૈશ્વિક પદ્ધતિઓ મેસે જોડને કા મહત્વપૂર્ણ કામ કર રહે હૈ. इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा पीने वाले इन्वेसिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है.
0: और अब मौसम. प्रदेश भर में लोग मानसून रा दूजा दौर रे शुरू होने रा इंतजार कर रहा है. फिर हुई लारला 24 घंटा में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और अलवर में भी बिरखाओं गर्मियों आराम मिलो है. बचोड़ी ठोड़ा माथे लोगों ने गर्मी और उमस रो सामनो करनो पड़ रियो है. मौसम महकमा रे मुजब मानसून एक कर फिर सक्रिय बह रियो है. महकमो आज 18 जिला सारू गरज चमक रे साथ बिरखारी गतिविधियां रो येलो अलर्ट बतायो है. राज्य सरकार सरकारी स्कूल भवनारी हिफाजत न लेर घनी सावचेत और संवेदनशील है. स्कूल शिक्षा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव आज जयपुर जिला में न्यारी न्यारी स्कूलों रो औचक निरीक्षण करने भवनारी हालात री जानकारी ली. ई दौरान वना हिफाजत और बुनियादी सुविधाओं रो जायजो लियो. श्री यादव अहलकारा ने स्कूल भवनारी हिफाजत रा बारा में जरूरी दिशा निर्देश दिया. वना कहो कि स्कूल भवनारी हिफाजत न लेर कोई समझौतो नी करियो जायलो. जयपुर में पहली बार काले विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस होवन जा रही है. विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार कानियो आ कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वेला. इनमें हिफाजती प्रवासन ने बढ़ावो देवन, फर्जी एजेंटों बचाव और प्रवासियों का कल्याण, निवेश और पर्यटन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जायला. जयपुर में आवता मीना ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग वेला. 6 और 7 अगस्त ने होने वाली ई मीटिंग ने लेर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तैयारियां री समीक्षा करी. वना इनो जुड़िया महकमा ने सगला इंतजाम तय भगत माथे पूरा करण रा निर्देश दिया. मुख्य सचिव महत्व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सारू हिफाजत और दूजा बंदोबस्त चाक चौबंद राखण नहीं कहो है. ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जन नुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया. मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनन री अर्ज करी. केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माथे मोहर लगाई. राज्य में आस वाली महिलाओं रा स्वास्थ्य जांच शुरू. सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू. 32 जोखिम वाली महिलाओं री खास निगरानी करी जायला. और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला सरू बिरखारो अलर्ट. नरेंद्र साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो. मारू आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला. नमस्कार.

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कार्यक्रम सुन वाला से भी कृष्ण भाई बने तय आपका साथी बालमुकुंद सुमन को राम राम। कृष्ण भाई बने, देखो आज को जो अपने कार्यक्रम छ तो इमें बात करेंगे अपने कृषि कार्य में जल प्रबंधन के। तो जल प्रबंधन को अर्थ यही हो जाए का फसल की जो उपज बढ़ावा के लिए पानी की बर्बादी रोक का और एक जल को करा, इस जल प्रबंधन कहा जा। अब इनके लिए आप जानो देखो का अपना जो फुहारा सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इनका माध्यम से भी अपने जल के तय रोक सका चा। साथ में ही जो वर्षा का जो जल है उनके तय एकत्रित करके और खेत के तय मेड़बंदी करके भी अपने जो वर्षा या पानी है उनके तय रोक सका चा। इनके अलावा पानी की बचत करवा का अपने पास घना सारा तरीका है जिसको कहीं जगह अपनी जो मिट्टी है उनको स्वास्थ्य भी अच्छो रहे और खजन का थोड़ा थोड़ा सो अगर आप पानी बचाऊंगा तो अपने पास वो कहावत है एक अपने के बूंद बूंद से घड़ो भर है। तो अगर थोड़ा थोड़ा पानी अपन बचाऊंगा अनावश्यक रूप से उनका ती ये अटी ये कई बार देखवा में आ अपने जो नहर है नहर इलाका में कहीं नहर खराब हो ही रहे या फिर आप पानी की आवश्यकता है कोई ना और जबरदस्ती उनको अपन ज़्यादा उपयोग कर रहे जा। तो ऐसे घनी सारी ऐसी चीज़ें जो कि जिनका माध्यम से अपन जल के ताई बचा सका जा। और फिर आप जानो देखो कि जल की तो अपने घनी सारी मांग है अबान भी अपना जो कृष्ण भाई बन जो वो जल के लेकर तो विचार कर रहा है कि भाई खदे का आओगो और अपनी जो फसल है वहाँ के तय अबान घनी आवश्यकता है। तो क्यों न फिर अपनी इंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए और वहाँ से अपनी जल के ताई छा जो वर्षा हो। और सुना एक मन में आ रही चुका हमको एक लोक गीत सुन लिया अपने तो सुना धनराज रावल साथ गायो एक लोकगीत।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: और कृष्ण सत्याओं, अवान आपने जो संतरा का बगीचा लग रहा है और वहाँ में कोई सी भी आपने बीमारी जो लाग जाओ छे, तो संतरा का बगीचा में कीट नियंत्रण कैसे करा और कहीं कहीं सावधानी रखना अपने, है ना? ये तमाम सारी जो बातें छे वहाँ के तई लेकर और आज आपने साथ छे डॉक्टर रवि यादव, अनुसंधान अध्येता उद्यान विमान के महाविद्यालय झालावाड़। तो सुना या सुहैया बातचीत।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्कार जी।
2: सर जैसे बात करते हैं, अभी वर्तमान में जो संतरे के जो बगीचे हैं या संतरा लगा रहे हैं लोग, है ना, तो क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है इनमें?
3: जी बिल्कुल, जो जुलाई का जो महीना है ये जो चल रहा है, इसमें नए बगीचे लगाने के लिए भी इस समय हम अपना नया बगीचा का जो रोपण है वो कर सकते हैं। साथ में इस बारिश के दौरान हमें हमारे पुराने बगीचों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें हम जिंक सल्फेट पर प्लांट 500 ग्राम, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं 300 ग्राम, मैंगनीज सल्फेट, बोरिक एसिड 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 100 ग्राम, बिना भूजा चूना 200 ग्राम, इन सबको लेके 100 लीटर पानी का घोल बनाकर अपने पौधों पर, पुराने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। इससे सभी पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। दूसरा, ये अपने बारिश की जो फल का जो ये टाइम है, मृग बहार जिसको बोलते हैं, इसमें ज्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें कटाई सटाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अगस्त में इसमें फूल आने लगेगा। साथ में ही बारिश के इस समय में हमें दीमक के प्रकोप से बचने के लिए हमारे पौधों में गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर केमिकल है हमारे पास है तो 100 ग्राम क्लोरोपायरीफॉस का पाउडर है, उसको घोल बनाकर पौधों के पास डाल दे। अगर नया पौधा लगा रहे हैं तो उसमें 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में मिलाकर और उसमें पौधे की जड़ें डुबाकर उसको लगाएं, तो दीमक हमारे नहीं लगेगी।
2: जी जी जी। अच्छा, जो हमारे पौधे हैं अभी, है ना, तो और कौन कौन से जो रोग हैं वो लगने की संभावना है डॉक्टर साहब इसमें?
3: जी बिल्कुल, प्रमुख रूप से इस समय जो हमारे पौधों में रोग लगते हैं उसमें कैंकर जो रोग है इस समय बहुत ज्यादा लगता है बारिश की वजह से, तो इसके लिए हमें 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा लगता है डाईबैक, वो भी ज्यादा नमी के कारण, तो हमें हमारे बगीचों में पानी नहीं भरने देना, तो डाईबैक से

0: रखने के लिए हम ऑक्सीक्लोराइड या मैनकोजेब 2 ग्राम लेकर उसको 1 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पर इनको दोहराना है। साथ में गोंदिया रोग लगता है, इस भी बोलते हैं, इसमें पौधे की जड़ें सड़ने लग जाती है। इसके लिए हमें जो बोरोडा मिश्रण है उसके पेस्ट का लेप करना चाहिए पौधे के तने पर। और इसके अलावा मैनकोजेब जो रिडोमिल MZ72 के नाम से आती है उसको 20 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में और अलसी का तेल और उसमें मिला लें, उसका छिड़काव करना चाहिए। साथ में काली मच्छी जो लगती है, मुख्य रोग जो हमारे हाड़ौती में है संतरा में काली मच्छी, इसको सूटी मोल्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पत्तियों का रस चूस लेता है जो रस चूसक कीट है और पूरा पौधे सूखने लग जाता है, टहनिया सूखने लग जाती है। इसमें आपको 1 ग्राम कार्बन डाइजिम को 1 लीटर पानी मिलाकर इसका आपको स्प्रे करना चाहिए। तो प्रमुख ये सभी रोग इसमें लगते हैं संतरा के अंदर।
1: और अभी जैसे बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया भी कि ये तो एक प्रमुख प्रमुख जो रोग हैं कीट

0: रस चूसक कीट है, और पूरा पौधे सूखने लग जाता है, टहनिया सूखने लग जाती है। इसमें आपको 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 1 लीटर पानी मिलाकर इसका आपको स्प्रे करना चाहिए। तो प्रमुख ये सभी रोग इसमें लगते हैं संतरा के अंदर।
1: और अभी जैसे बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी कि ये तो एक प्रमुख प्रमुख जो रोग हैं, कीट व्याधि हैं, इसके बारे में है
0: जी।
1: और जैसे अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, और ऐसे मौसम में जो संतरा है तो इनके कुछ फल वगैरह के भी रहता है क्या? ये
0: जो ये महीना है जुलाई का, इसमें सबसे ज्यादा जो आर्द्रता है, मॉइस्चर जो है वातावरण में बना रहता है, हवा में भी, और सबसे ज्यादा नमी रहती है मिट्टी में, तो इसमें जड़ गलन रोग है संतरे के पेड़ों के थावड़ों में, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रोक सकते हैं। साथ में अगर आपका जो नया फूल आ रहा है तो उसके लिए वो फूल झड़े ना नमी की वजह से और ज्यादा कीटों का प्रकोप ना हो, तो आप 10 ml नीम का तेल लेकर उसको 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर सकते हैं पौधों के फूलों पे, तो वो आपका जो नया फूल है उसमें इंसेक्ट नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, तो उससे हम बच सकते हैं।
1: और अपने जो झालावाड़ जिला है तो इसमें अभी जो नए जैसे बगीचे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसान जो है अभी वर्तमान में क्या करें, या फिर समय है कौन सी वैरायटी लगाएं, ये क्या करना चाहिए किसान?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये समय जुलाई माह का पौधा नए बगीचे लगाने का है संतरे का टाइम, इसमें आप लगा सकते हैं। मुख्य जो वैरायटियां हमारे यहाँ है जो संतरा उत्कृष्टता केंद्र में और हॉर्टिकल्चर कॉलेज में आपको मिल जाएगी, वो है मुख्य रूप से नागपुरी संतरा, नागपुरी सीडलेस, क्लेमेंटाइन, मिखाल वैरायटी है, खांसी वैरायटी है, किन्नू है, डेजी संतरा है। ये प्रमुख रूप से 5-6 वैरायटियां हैं जो हमारे यहाँ झालावाड़ में बहुत अच्छी इनका उत्पादन होता है। नागपुरी संतरा है, ये नागपुर क्षेत्र की सबसे प्रमुख वैरायटी है जो पूरे झालावाड़ में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है इसी वैरायटी का है, क्योंकि इसकी उपज 18 से 25 टन है प्रति हेक्टर।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसको आप लगा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, ये जो मान लो पौध लगाना चाहते हैं और अब जो किसान हैं या जो भाई बहन हैं अपनी बातचीत सुन रहे हैं, तो वो एक पौधों को कहाँ से लाए, क्या करें, इसके लिए कुछ जानकारी दे सकते हैं आप किसान को?
0: बिल्कुल, पौधे खरीदने के लिए आप झालावाड़ में कृषि विज्ञान केंद्र है, सबसे ये सभी वैरायटियों के पौधे आपको संतरा उत्कृष्टता केंद्र में मिल जाएंगे, आपको कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में मिल जाएंगे, आपको उद्यानिकी कॉलेज झालरा पाटन में मिल जाएंगे, इनमें से आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको तो मतलब अच्छी क्वालिटी के पौधे यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। साथ में हमें 1x1x1 का गड्ढा करना है, और उसमें गोबर की खाद डाल लो और क्यूनोल फॉस्ट 1.5% वाला, उसका 1 लीटर पानी में मिलाकर उसके घोल में पौधों की जड़ों को डुबो डुबो के आप इस समय पौधारोपण कर सकते हैं, जिससे दीमक नहीं लगेगी। तो ये इस समय आप प्रक्रिया अपना सकते हैं और अच्छे से अपना नया बगीचा का रोपण कर सकते हैं।
1: जो किसान है जिन्होंने अभी गड्ढे नहीं किए हुए और वो भी चाहे कि भाई हम पौधे लगाएं, तो उसके लिए लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या?
0: तो जैसे कोई पीछे रह गया है अभी और उसको नया बगीचा लगाना है, तो इस बार अभी बारिश इतनी हुई नहीं है, अगर संभव है गड्ढा होना तो आप गड्ढा कर 2-5 दिन उसमें गोबर की खाद डाल दें, क्यूनोल फॉस का घोल बनाकर डाल दें, उसके बाद अपनी पौध को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और अब जैसे बात करते हैं संतरा वाले, तो इस संतरा का जो बगीचा है और अभी इसको लेकर के, और जैसे इनमें कोई अपने द्वारा भी कोई कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं कि भाई इससे ये जो किसान है उनको जागरूक करने के लिए?
0: जी, आपके संतरा को लेके संतरा उत्कृष्टता जो केंद्र है अपना झालरा पाटन में थर्मल रोड पर, वहाँ पे कई प्रकार की ट्रेनिंग्स है जो सर्दियों में चलती है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो आप वहाँ पे आके इसके ले सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, तो उस प्रकार के ट्रेनिंगों में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी नई वैरायटियों के बारे में बताया जाता है, आपको वहाँ पे नए तरीके से कैसे को पौधारोपण करना है, बगीचों की देखरेख कैसे करनी है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, तो आप किसान वहां से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में जो किसान भाई बहने जो आपकी बातचीत सुन रहे हैं, तो एक सलाह के तौर पर उनको क्या करना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर?
0: जी, मैं सभी किसान साथियों को कहना चाहूंगा कि बरसात के इस मौसम में आप

0: और रोगों का अधिक ध्यान रखें, उससे बचने के लिए हमेशा अपने बगीचे की निगरानी करते रहें और देखें कि कहीं कोई किसी कीट का या रोग का प्रकोप तो नहीं है, और अपने बगीचे की साफ सफाई रखें। ज्यादा घनी अगर टहनिया है तो उनको निकाल दें, और इस समय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करें, नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल ना करें।
1: डॉक्टर साहब, आज हमारे जो कार्यक्रम में आपने सुनने वाले किसान भाई बहनी इनको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार साहब।
0: नमस्कार जी।
2: करसान भाई बहनों, अबान अपने यह जानकारी ली संतरा का बगीचा में कीट नियंत्रण कैसे करा, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बताई कि संतरा का जो भी बगीचा है तो वहाँ अपनी कोई भी कीड़ा लग जाओ तो वहाँ की अपनी जरूर पूरा पूरा ध्यान रखनी चाहिए। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रवि यादव, अनुसंधान अध्यता, उद्यान के मान के महाविद्यालय झालावाड़। और आपने अबान जो एक ग्रामीण भंडारण योजना और इम आपने जो सरकार चे या अनुदान भी दे चे, तो क्यों न फिर अपनी भंडारण करवा के लिए, क्योंकि आपने जो भी फसल च साग सब्जियां च अटिकाटी सू बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अपनी भंडारण करव बहुत आवश्यक है, तो आपने जो भी योजना हो सरकार के द्वारा उनको जरूर अपनी पूरा पूरा फायदा उठानी चाहिए। और ग्रामीण जो भंडारण योजना है तो ऊँसो अपना जो प्याज को सीजन चाह रही है तो प्याज के ताई भी अपना भंडारण करके और आगामी आवाड़ो जो समय है उनमें एक अच्छा दाम आप बेच सका जा। तो जो भी ये अपना ऐसे की ये भंडारण योजना है यहाँ को अपनी पूरा लाभ उठानी चाहिए।

और कृष्ण भाई बण्यो, अब आपने जो कार्यक्रम छ इम मन करियो छे कि एकाद लोकगीत और सुन लिया, तो सुना वीणा शर्मा और सत्या को एक लोकगीत, महने डरपणी लागे रे बम्बई मेल में।

ओ माने डरपणी लागे रे बम्बई मेल में। हाँ देखो करसन सत्य हो अबान अपन यो लोगी सुनियो और अबान आपने जो सोयाबीन की फसल छे वो कुछ जो करसन साथी छे वाने तो भली बोधी छी तो उमा अबान आपने समय छे कड़पा खाड़वा को। और ये जो सोयाबीन की फसल छे उमा अपनी अपन कड़पा खाड़ के और अगर उनकी जो खरपतवार छे उनके तय हटाऊंगा तो उनसे कहीं जगह ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो कई किसान कहीं करे जगह अपना दवाई छिड़क कर और खरपतवार के तय हटाओ छे तो खरपतवार एक अपना अस्यो बिना बुलाए मेहमान छे जिके द्वारा अपनी जो फसलें छे वहाँ में काफ़ी नुकसान पहुँचाओ छे। तो इनको जरूर अपनी अपने खरपतवार की जो नाशी छे उनकी बजाय अगर अपने देसी जो उपाय करेंगे तो उनसे अपनी फसल भी बढ़िया होगी और मिट्टी को स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब चलता चलता आपको जो झालरापाटन मंडी को भाव रहे हो गेहूँ बकिया छे 2350 से 2550, सोयाबीन बकीचा अपना 6000 से 7100 और सरसों को भाव रहे हो 7000 से 7400, धनिया को भाव रहे हो 9000 से 15000, वहीं चना बकिया छे 4900 से 5400 और अलसी को भाव रहे हो अपना 8400 से 9000, चिया सीड 13000 से 18000 और मसूर बकीचे 6000 से और 8000 रुपया, वहीं जो कलौंजी छे वह 10000 से और 17500 रुपया प्रति कुंटल का भाव सूँ बकी। और अब अपना कार्यक्रम को टर्म भी पूरा रहे आपका साथी बालमुकुंद सुमन कताई चालवा की आज्ञा दियो। राम राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है FM 103.2 MHz पर। आइए श्रोताओं आनंद लेते हैं मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ये कार्यक्रम।
1: किशोर कुमार को फिल्म झील के उस पार में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

प्यार का मौसम। अब सुनिए इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश त्रिशूल फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत खयाम का बोल साहिर लुधियानवी के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग बागेश्री से। गीत लिखा है शैलेंद्र कुमार ने, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज लता मंगेशकर की।

अभी आपने राग बागेश्री पर आधारित गीत सुना, फिल्म थी रंगोली। अब सुनिए राग खमाज पर आधारित गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब राग खमाज के बाद आते हैं राग भीम पलासी पर। फिल्म है काला बाजार, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत एस डी बर्मन का।

ये था राग भीम पलासी। और अब कार्यक्रम के अंत में राग भैरव पर आधारित गीत सुनिए बैजू बावरा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का।

अभी आपने राग भैरव पर आधारित बैजू बावरा फिल्म का गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी वादों की शाम। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: आज शाम
1: वादों के नाम
0: हमारी शादी के वर्षगांठ का दिन
1: आज की शाम को दोनों का प्रणाम।
0: हर साल की तरह
1: हम एक दूसरे को
0: साक्षी मानकर
1: मैं यानी सुदेश कुमार बिंदु,
0: मैं कमला श्रीमती सुदेश कुमार
1: बिंदु।
0: ओ, बिंदु तो तुम्हारा साहित्यिक नाम है।
1: वो तो क्या हुआ,

0: पूरा नाम लेकर ही शपथ ली जाती है।
1: चलो हो गया ना, अब आगे बढ़ो।
0: शपथ लेते हैं
1: हम एक दूसरे के प्रति
0: वफादार रहेंगे,
1: प्यार से रहेंगे,
0: झगड़ा नहीं करेंगे,
1: कभी नहीं लड़ेंगे,
0: एक दूसरे का आदर करेंगे,
1: एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे,
0: मन की बात बताएंगे,
1: झूठ नहीं बोलेंगे,
0: सच सच कहेंगे
1: और किए हुए वादों को पूरा करेंगे,
0: वादे पूरे करेंगे
1: जो कभी पूरे नहीं हुए,
0: जो कभी पूरे नहीं हुए। ठहरो ठहरो, क्या मतलब है तुम्हारा?
1: मैं आज वादों की शाम की खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर फिर भी क्या पूछ सकती हूँ कि तुम जो कहते हो उस पर अमल भी करते हो?
0: मगर कौन सा वादा? कह के ये और कुछ कहा ना गया कि मुझे आपसे शिकायत है।
1: अभी बताती हूँ।
0: अरे अरे, कहाँ जा रही हो?
1: ये देखो।
0: ये क्या, कागजों का पुलंदा? अरे अरे, तुमने भी कोई उपन्यास लिख डाला?
1: उपन्यास? जी हाँ, उपन्यास ही है शिकायतों का।
0: शिकायतें? अरे बाबा, बिगड़े हुए हैं, जिद पे हैं, कोई उनसे क्या कहे। इस वक्त बात बात के दफ्तर बनाएंगे।
1: तो आज्ञा है, खोलूं शिकायतों का दफ्तर?
0: ना बाबा, बंद ही रहने दो इस दफ्तर को। आज शाम प्यार की शाम है, वादों की शाम है, हमारी शाम है। जितनी भी हसीन बन सके बनाई जाए।
1: तुम एक शाम की बात करते हो, यहाँ मैं हर शाम इंतजार करती रही कब आप पिछले साल वादों की शाम की वादे को निभाने शाम को जल्दी घर आते हैं।
0: कमला मैम,
1: सबके सब पुरुष 5 बजे घर आ जाते हैं। कोई अपनी पत्नी का हाथ बटाता है, कोई बच्चे खिलाता है, कोई पत्नी को लेकर बाहर घुमाने चला जाता है, मगर तुम हो के।
0: कमला, तुम मेरी तुलना उन क्लर्कों से करती हो जो संसार में केवल क्लर्की करने आते हैं और क्लर्क ही रिटायर हो जाते हैं।
1: उनकी पत्नियां तो खुश हैं, उनका जीवन तो सुखी है, और बुरा न मानना, तुम भी तो एक क्लर्क ही हो।
0: हाँ हाँ, मैं एक क्लर्क हूँ। ये मेरी किस्मत है कि मैं साहित्यिक होते हुए भी एक क्लर्क हूँ, कर्म से, धर्म से नहीं।
1: और अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारा धर्म?
0: अपनी तरफ से तो निभा रहा हूँ,
1: मगर गृहस्थ की गाड़ी अकेली मैं ही चला रही हूँ।
0: तुम चाहती हो साहित्यकार अपना कलम तोड़ दे और लून तेल लकड़ी के चक्कर में फंस जाए?
1: मैं चाहती हूँ साहित्यकार और कुछ नहीं तो अपने वादे निभाए।
0: कौन सा वादा भंग किया है मैंने?
1: एक हो तो बताऊँ, इंटरिम रिलीफ को लो। तब कहती थी सारी की सारी इंटरिम रिलीफ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मेरी रानी। क्या हुआ जिस रकम का?
0: वो जिस रिलीफ के लिए सरकार ने दी थी उस फंड में दे दी।
1: क्या मतलब?
0: कमला, हम लोगों के छोटे मोटे कर्जे उतर गए।
1: मगर ये कर्जे?
0: क्या करूं कमला, सारी तनख्वाह तो तुम्हें दे देता हूँ, कभी कभार कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़ते हैं।
1: सारी तनख्वाह? आह, सारी तनख्वाह तो तुमने ऐसे कहा जैसे मैं तो सेविंग बैंक में जमा करवा देती हूँ ना। जानते हो घर का खर्च किस तरह चलाती हूँ? तुम क्या जानो, तुम्हें तो पड़ी रहती है अपनी गोष्ठियों की। मैं पूछती हूँ जी, क्या दिया है तुम्हारे साहित्य ने तुम्हें? नाम मात्र भी कुछ नहीं मिलता।
0: ना सही, पर कमला नाम तो है।
1: खाली नाम से रोटी तो नहीं चलती। मैं कहती हूँ तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? ओवर टाइम लगाओ, सभी क्लर्क इतना इतना पैसा बनाते हैं।
0: ओवर टाइम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कमला।
1: जी हाँ, गोष्ठियों से फुर्सत मिले तब ना।
0: साहित्य मेरा जीवन है।
1: और मेरा जीवन? कभी ये भी सोचा है मैं अकेली पड़ी रहती हूँ घर में क्या करती हूँ? क्या मेरा दिल नहीं करता कभी बाहर घूमने को?
0: तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती, मैं कितनी बार कह कहकर हार गया।
1: बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं।
0: साड़ी? क्यों जी, वो साड़ी क्या हुई जो जनाब ने पिछले महीने ही खरीदी थी, मेरी अनलिखी कविता की रॉयल्टी?
1: वो अरे वो तो आउट ऑफ डेट हो गई।
0: ओहो, मुझे क्या मालूम था कि आजकल कपड़ों पर दवाइयों की तरह तारीखें पड़ी होती।
1: और देखो ना, अब साड़ी का फैशन ही कहाँ रहा है, अब तो चलता है कुर्ता पायजामा या लुंगी।
0: कुर्ता पायजामा और लुंगी?
1: हाँ हाँ, जमाने के साथ तो चलना ही पड़ता है ना।
0: डार्लिंग, जमाने के साथ चलना है तो मेरा साथ दो।
1: तुम्हारा साथ?
0: हाँ कमला, जैसे शादी से पहले तुम मिलने चली आती थी, अब भी आ सकती हो।
1: काश ऐसा हो सकता।
0: ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कितने अच्छे थे वो दिन,
1: हम रोज मिलते थे,
0: कहीं दूर निकल जाते थे,
1: कहीं एकांत में
0: मैं अपनी कविता पढ़ता था,
1: मैं उसे गा कर सुनाती थी,
0: तुम्हारी आवाज में जादू था,
1: तुम्हारी कविता में अमृत,
0: तब तुम्हें मेरी कविता से प्यार था,
1: तब तुम्हारी कविता में मैं थी, तब तुम्हें मुझसे प्रेम था।
0: उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रेम तो तुमसे अब भी है कमला, हाँ कविता का रंग जरूर बदल गया है।
1: रंग बदल गया है या तुम बदल गए?
0: कैसी बातें करती हो कमला, मेरे लिए तो तुम अभी वही हो, मेरी कम्मो।
1: जाओ जाओ, बातें न बनाओ।
0: बातें न बनाऊं तो तुम्हें कैसे बनाऊं?
1: बातों से नहीं, मेरे सुदेश बनकर मनाओ।
0: ओ, मेरी कम्मो, मेरी सपनों की रानी।
1: अब सपने साकार हो गए ना।
0: तुम्हें क्या हो गया है आज, तुम अपने

0: आपको ऐसा क्यों समझती हो डार्लिंग? मेरा ख्याल है मैं नहीं, तुम बदल गई हो। हाँ तुम।
1: हाँ, मैं बदल गई हूँ।
0: हाँ, ना मेरे घर आने पर पहले सा स्वागत, होठों पे मुस्कान, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पे वो खुशी। बस बस अब तो रह गया है बात बात पे लड़ना, बहस करना, झगड़ना।
1: हाँ, मैं लड़ाकू हूँ ना, दिन भर लड़ती रहती हूँ ना दीवारों से, अकेली पड़ी रहती हूँ। फूट गई मेरी किस्मत।
0: किस्मत तो हमारी एक बंधन में बंध चुकी है
1: तो
0: भगवान।
1: कौन रोकता है? खोल दो ना ये बंधन, छोड़ दो मुझे। मैं आज ही चली जाऊंगी बाबूजी के यहाँ।
0: कमला डार्लिंग सुनो तो,
1: मैं नहीं
0: कमला
1: रुकने
0: बात तो
1: की।
0: सुनो, कमला सुनो तो
1: मैंने
0: प्लीज।
1: कह रहा
0: बात तो सुनो कमला, प्लीज देखो क्या बात
1: मैं अभी
0: करो।
1: सामान बांधने जा रही हूँ।
2: क्यों जी, कोई है घर में?
3: आवाजें तो आ रही थी।
0: कौन है, कौन है, कौन?
1: मनु जो सीमा है।
0: आप क्या किया जाए?
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि झगड़ा रोक दिया जाए या जारी रखा जाए।
1: मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आज ही बाबूजी के यहाँ जा रही हूँ।
0: मगर कमला सरा सोचो, बाहर मेहमान खड़े हैं, तुम चाहती हो वो हमारा मजाक उड़ाए? क्या थोड़ी देर के लिए ये झगड़ा बंद नहीं हो सकता?
1: अच्छा अच्छा मान लेती हूँ, मगर एक शर्त पर।
0: किस शर्त पर बोलो?
1: मेहमानों के जाते युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा।
0: युद्ध विराम? ठीक है, मुझे मंजूर है।
4: अरे भाई अंदर से अपनी कहते रहोगे या बाहर से हमारी भी सुनोगे?
1: बुलाओ ना उन्हें।
0: अरे आइए आइए आइए, अरे आप हैं, आइए आइए।
3: और आप क्या समझे थे?
2: कमला बहन, रेडियो क्यों बंद कर दिया?
1: रेडियो?
2: कोई नाटक सुन रहे थे क्या?
0: नाटक? अरे हाँ हाँ, वो बीवी का भाषण सुन रहा था।
3: अरे हाँ, ब्याह की वर्षगांठ मुबारक हो भाई।
2: हम तो बधाई देने आए थे।
0: धन्यवाद।
2: क्या प्रोग्राम है आज आपका?
0: प्रोग्राम?
3: जी हाँ, हम ये जानने आए थे कि आप ये पुण्य त्योहार कैसे मना रहे हैं।
2: पुण्य त्योहार? आपका आपस में प्यार देखकर मानना ही पड़ता है आप एक आदर्श दंपति हैं।
3: ना कोई झगड़ा, ना कोई तकरार,
2: बस प्यार ही प्यार।
3: एक ने कहा,
2: दूसरे ने माना।
3: मैंने सीमा से बहुत दफा कहा है कमला बहन से कुछ सीख लो, कुछ
2: और
3: सीख लो।
2: आपको सुदेश भाई साहब से शिक्षा लेनी चाहिए, समझे?
3: बस सुदेश जी क्या बताऊं, हमारी श्रीमती जी तो तरह तरह सी बात पर झगड़ा कर बैठती।
2: बिल्कुल गलत, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा आप देते हैं।
3: देखिए मैडम, देखिए मैडम, पहल हमेशा तुम्हारी ओर से ही होती है और तुम खाम खाम बोलना शुरू कर देती हो।
2: तुम तो मेरी कोई सुनते ही नहीं हो, बस हंसना शुरू कर देते हो जैसे मैं कोई पागल हूँ या।
1: सीमा ठीक कहती है, आपको उसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए
0: बल्कि रोना चाहिए।
1: और आप लोगों के सिवा हंसने की और आता है क्या है?
2: ये मर्द लोग हमारा दुख दर्द जान ले तो सारा झगड़ा ही ना खत्म हो जाए।
1: ये तो घर घर की कहानी है बहन, मर्द हमेशा अपनी मनवाना चाहते हैं, बस।
2: आप ठीक कहती हैं।
3: मगर सुदेश जी, मुसीबत तो ये है कि पढ़ लिख कर ये औरतें मर्दों पर अपना अधिकार जताना चाहती
0: हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ।
1: देखा देखा, मर्द कितनी जल्दी औरतों के खिलाफ एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
0: और औरतें मर्दों के खिलाफ अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाने में जरा भी देर नहीं करती।
3: और औरतों का यूनाइटेड फ्रंट बजाय पति पत्नी में सुलह सफाई कराए तलाक दिलाने पर जोर देता है।
2: आप यहाँ भी बाज नहीं आए अपनी मट्टी उछालने में, तलाक की तारीफ के गुनगाने शुरू कर दिया आपने।
0: तो दोस्त, तुम्हारे यहाँ भी तलाक की चर्चा होती रहती है ना?
3: यहाँ तो केवल चर्चा ही होती है यार, बाहर के देशों में तलाक यूं मिलता है जैसे हमारे यहाँ बाजार में डबल रोटी।
0: और तो और, मर्द बेचारा काम काज से थका हारा मीठी नींद में दो चार खराटे भर ले तो अगले दिन तलाक।
1: और औरत खाने में जरा सा नमक ज्यादा डाल दे तो बेचारी को तलाक मिल जाती है।
2: तलाक तलाक तलाक, मैं तो तंग आ गई हूँ ये सुन सुनकर। तो दे दो ना, दिल का भड़ास निकाल लो ना।
3: तो सीमा, ऊट पटांग मुंह से निकालते हुए जरा तो सोच लिया करो, हम कहाँ हैं, किस जगह हैं।
2: तो घर चल के ही बात कर लेना, मैं जा रही हूँ।
3: ऐसे सीमा सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ।
0: शुक्र है चले गए, आदर्श पति पत्नी को देखने आए थे।
1: वो तो देख कर चले गए, अब क्या इरादा है?
0: क्या मतलब?
1: युद्ध विराम समाप्त किया जाए,
0: यानी लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाए।
1: हाँ
0: कमला डार्लिंग, छोड़ो भी गुस्से को।
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ हमने कहा किस बात पे युद्ध विराम किया था?
0: युद्ध रुक नहीं सकता है।
1: जी नहीं, मैं अपना फैसला चाहती हूँ, बताइए। मैं क्या कह रही थी?
0: आप, हाँ आप शायद अपने बाबूजी के यहाँ जा रही थी।
1: हाँ याद आया, तो सुन लीजिए मैं आज ही जा रही हूँ।
0: जा रही हो? ठीक है मैं छोड़ाऊंगा, मगर जरा सोचो मेरी रानी, क्या आज ही, आज हमारी शादी की वर्षगांठ है? याद है आज के दिन हमारा गठबंधन हुआ था और तुम उसे खोलना चाहती हो, मुझे छोड़ना चाहती हो? छोड़ना ही है तो छोड़ो अपनी जली कटी बातों को, अपने गुस्से को, अपने गर्म स्वभाव को।
1: तभी तो कहती हूँ ना, सुखी हो जाओगे मुझे छोड़कर।
0: ऐसी बातें करती हो कमोड,

0: डार्लिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है?
1: देखो देखो देखो देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ, मेरी आंखों में झांको। क्या मैं तुम्हारा सुदेश नहीं हूँ?
2: देखो, अब तुम प्यार के ओछे हथियार पर उतर आए हो। जंग में मोहब्बत के शब्द इस्तेमाल करके तुम जंग के नियमों को भंग कर रहे हो।
0: जंग और मोहब्बत में सब जायज है डार्लिंग। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम गुस्से में।
2: तुम्हारा मतलब है तुम्हें सुंदर दिखाई देने के लिए मैं लड़ती ही रहूं?
0: लड़ना भी एक आर्ट है डार्लिंग, और बिना बात के लड़ने वाला एक महान आर्टिस्ट है, कलाकार है।
2: देखो देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो।
0: उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है।
2: और तुम्हें आता ही क्या है?
0: इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।
2: हाँ, यानी मतलब ये हुआ कि मेरी बातें तलवार की तरह तीखी हैं।
0: ऐसी तीखी कम हो कि ये घायल प्रेमी आज तक तड़प रहा है।
2: और अब क्या चाहता है ये घायल प्रेमी?
0: सफेद झंडी दिखा रहा है सुलह की।
2: अब लड़ झगड़ कर मनाने चले।
0: बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर।
2: सुलह की शर्त क्या है?
0: वही पिछले साल वाली शर्तें। मैं वादा करता हूँ
2: फिर वही वादों की शाम।
0: हाँ डार्लिंग, आज भी वही।

0: तीखी हैं।
1: ऐसी तीखी कम हो कि ये घायल प्रेमी आज तक तड़प रहा है।
0: और अब क्या चाहता है ये घायल प्रेमी?
1: सफेद झंडी दिखा रहा है सुलह की।
0: अब लड़ झगड़ कर मनाने चले।
1: बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर।
0: सुलह की शर्त क्या है?
1: वही पिछले साल वाली शर्तें। मैं वादा करता हूँ।
0: फिर वही वादों की शाम?
1: हाँ डार्लिंग, आज भी वही तारीख है, वही शाम है।
0: तो शपथ लो।
1: तुम भी साथ कहो।
0: हम शपथ लेते हैं,
1: हम आपस में नहीं लड़ेंगे,
0: नहीं झगड़ेंगे।
1: लड़ेंगे भी तो जल्दी सुलह कर लेंगे
0: आज की तरह।

वादों की शाम, आप सुन रहे थे मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम।
3: श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अलका याग्निक और साथियों के गाए गीत से। फिल्म है सिर्फ तुम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

हमसे है मुकाबला। इस फिल्म में मनु और स्वर्णलता का गाया गीत सुनिए। गीत लिखा है पीके मिश्रा ने और संगीत ए आर रहमान का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए अब सुनते हैं फिल्म सोल्जर में समीर का लिखा गीत, संगीत अनु मलिक का है और आवाजें हैं जसविंदर नरूला और सोनू निगम की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म राज में आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा गीत। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इस गीत को गा रही हैं अलका याग्निक।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी झालावड़ का चंद्रभागा चैनल है। 9:45 बजने को हैं थोड़ी देर में समाचार संध्या, हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को

0: भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़ाहरिएवा से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और

0: हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बेला सुलाखे की गई इस भक्ति रचना के साथ।

अदनान स्वामी के गाइस गीत के साथ ही सब रस का ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।